हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव सही नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
2: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: ईरान सां हुन मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो ऐलान सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां मुआदे ते सयूं थींदे ई आबनाए हुरमुस सभिनी लाइ खुली वेंदो सुकून थियण बाद मुनासिब वक़्त ते एटमी मवाद जे बाक़ियात बि हासिल करे वठंदासीं उमेद आहे ॻाल्हियुनि वारो समूरो अमल जल्द ऐं आसानी सां मुकमल थी वेंदो असां ईरान ऐं विच ओभर जे मुल्कनि सां गॾिजी कम करण जा मुंतज़िर आहियूं आबनाए हुरमुस खुलण बाद G7 मुल्कनि सां गॾु बारूदी सुरंगूं साफ़ करण जो कम शुरू कयो वेंदो असांजो मुआदो ओबामा जे मुआदे जहिड़ो न आहे ईरान खे मुआदे एवज़ का बि रक़म न ॾिनी वेंदी

ईरानी फौज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अज अनमायदे से सयों वाली दावा रद्द कर छी। ईरानी पासदार ने इनकलाब फौज जो चवण है ईरानी मुजाकरातकार आचर डियाड कें भी मायदे से सयों न कर बाबत आगाह कर चुका है। सदर ट्रंप सही वाली तकरीब पैंजे सालगिरह के करे 14 जून ते करना चाहे तो। ट्रंप उन मौके के अलामती अहमियत दई पैंजी जाती मशहूरी जो प्रोग्राम बनाए रो है।

ईरान के शहीद सुनाई की जनाज नमाज अलविदाई तकरीबन इजतमान जो शेड्यूल जारी। ईरानी मीडिया मूजिब आयतुल्लाह खामनाई की जनाज की अलविदाई तकरीबू 4 5 जुलाई से तेहरान में मुनक़िद थी। जनाजे की तकरीब 6 7 जुलाई से तेहरान कुम में थी। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के 9 जुलाई से मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार में तदफीन कई वी।

ईरान सुरखरू ऐं अमरीका खे शिकस्त थी चुकी आहे। ईरान ते हमले में मुसलमाननि में बेदारी जो नओं रूप फूके छॾियो आहे। इसराइली परेशान आहिनि त मुसलमान मुतहद कीअं थी विया आहिनि। नवाज़ लीग अॻवान ख्वाजा साद रफ़ीक़ चयो आहे त पाकिस्तान अमन लाइ भरपूर किरदार अदा कयो। ईरान जी जुरत, फलस्तीन जी हिमत ऐं पाकिस्तान जी दानिशमंदी इसराइल जी साज़िश खे नाकाम बणाए छॾियो।

सूबनि पारां मर्कज़ जे मदद करण ते थोरायता आहियूं। हाणे तरक़ियाती मनसूबनि लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तरफ़ वञणो पवंदो। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत सुठो कम करे ॾेखारियो आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाणे वारे वज़ीर चयो त बजट में 70 अरब रूपये ॾिनो आहे। ज़रई मशीनरी तां कस्टम ड्यूटी ख़तम कई। तामीराती शोबे तां बि टैक्स घटाया आहिनि। वफ़ाक़ी बजट पघारदार तबिके सनअतकारनि ऐं एक्सपोर्टर्स लाइ आहे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाणे वारे मुमलिकती वज़ीर बिलाल अज़हर कयानी चयो त समूरनि शोबनि तां भार घटाइण जी कोशिश कई आहे। हीउ बजट पंहिंजो घर ठाहींदड़ जी बजट आहे। घटि पघार खणंदड़ तां गुज़िरियल साल ई टैक्स घटायो हो। हिन भेरे बि रिलीफ ॾिनो आहे। वापारियुनि एक्सपोर्टर्स इंडस्ट्रीज तां बि टैक्स घटायो आहे। बजट सां सनअतनि खे हथी मिलण सां गॾु रोज़गार जा ज़रिया बि पैदा थींदा।

0: कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आईन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के। और आप गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मजाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मजाक मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया है हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज अच्छे इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं।
1: वजीर आजम एक भेरो बीहर अपोजिशन के मिसाक मईशियत और मिसाक जमहूरियत के गालन की दावत दई छी। कौमी असेंबली में खिताब कदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चे तो सियासत और नजरियो सभी जो पहंजो आए, पर पाकिस्तान आए तो सब आयु असाजा सब भायर आए, को भी जेड़ो ना है। पहरे भी अपोजिशन लीडर की हैसियत में मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशियत लाइ हो, पर मुझे खुलूस से बदल आछ के रद्द कर वो। हाँ भी दावत दिया तो अचो वेहो अगत बदो चैनी सूबे के एक जेतरी तरक्की मुझो मकसद आए। कानून लागू कदड़ इदारा मुल्क के अमल लाए दी रात कम कर रहा है, संदन खिदमतन कुर्बानन जो एतराफ़ एतराम थे घुर्जे।

0: अल्लन यहूर, ये तो समझता था कोई वापसी है ही नहीं, कोई जवाब भी न होगा। बाबर बैश को उसके आलम दोबारा नीस, खूब मजे करो कि दुनिया दोबारा थोड़ी मिलेगी। मसलन आप देखें, हम शादियों के मौके पे हर गलत काम करते हैं, ये कह के लो एक ही दफा तो शादी होती है, एक ही तो दफा, अब ये भी ना करें वो भी ना करें, हर गलत काम ये सोच के कर लेते हैं, अच्छा सब तो कर रहे हैं अब हम ही ना करें। वमा कानु बि आयातिना यजहदून, तीसरा कसूर कि ये हमारी आयात का इनकार करते थे। पहला, दीन को खेल तमाशा बना लिया, फारिग वक्त का खेल। दूसरा, आखरत की मुलाकात को भुला दिया। तीसरा, अल्लाह के अहकामात का इनकार कर दिया। इसके बारे में एक हदीस है सही मुस्लिम में कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस किस्म के बंदे से कहेगा, क्या मैंने तुझे बीवी बच्चे न दिए, तुझे इज्जत और इकराम से न नवाजा, क्या ऊंट और घोड़े तेरे ताबे न थे, आज के दौर में गाड़ियां कह सकते हैं, क्या तू सरदारी करते हुए लोगों से चुंगी वसूल न करता था, यानी तुम्हारी अथॉरिटी न थी। वो कहेगा क्यों नहीं या अल्लाह, ये सब बातें सही हैं। अल्लाह ताला उससे पूछेगा, क्या तू मेरी मुलाकात का यकीन रखता था, वो कहेगा नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा, बस जिस तरह तू मुझे भूला रहा आज मैं तुझे भूल जाता हूँ। और याद रखने का तरीका क्या है, ये किताब। वलकद जिनाहुम बिकिताबिन फसलनाहु अला इल्म, अलबत्ता तहकीक लाए हैं हम उनके पास एक किताब जिसे हमने इल्म की बिना पर तफसीलन पेश किया है, खोल खोल के रख दिया हमने इल्म के साथ। हुदा व रहमतन लिकौमी युमिनून, हिदायत और रहमत उस कौम के लिए जो ईमान रखती हो। लेकिन लोग इस किताब की तरफ तवज्जो ही नहीं देते, सुनते न समझते हैं, आखिर क्या बात है, मुश्किल क्या है उनकी। हल यंजुरून इल्ला तअवीलहु, क्या अब लोग इसके सिवा किसी और बात के मुंतजिर हैं कि इनके सामने अंजाम आ जाए जिसकी ये किताब खबर दे रही है, क्या इस इंतजार में है कि वो हो जाए जो ये कहती है कि होगा। यौम यअती तअवीलहु, जिस दिन इसका अंजाम सामने आ जाएगा। यकूलुल लजीना नसूहु मिन क़ब्ल, तो कहने लगेंगे वो लोग जिन्होंने इससे पहले इसको भुला रखा था। क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक, कि हमारे रब के रसूल बिल्कुल सच लाए थे, यानी क़यामत के दिन सबको यकीन आ जाएगा कि रसूलों ने सच कहा था। आज तो मजाक में उड़ाते हैं ना उनकी बातें, लेकिन कल कोई नहीं मजाक कर सकेगा। फहल लना मिन शुफा, कोई है हमारे सफारशी, फयशफउ लना, जो हमारे लिए सफारिश कर सके। औ नुरद्दु, या हम लौटाए जाएं। फनअमल गैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल, तो हम कुछ ऐसे अमल करें जो इससे पहले नहीं करते थे, यानी जो कुछ हम पहले करते थे इसके बजाय अब दूसरे तरीके पर काम करके दिखाएं। फना अमला, कि हम अमल करें, गैर अल्लज़ी, उसके सिवा, कुन्ना नअमल, जो हम पहले करते थे, यानी जो गलत काम करके आए हैं, एक चांस और मिल जाए वो सब छोड़कर अच्छे काम कर लें, लेकिन अब तो कोई वापसी ना होगी। कद खसरु अनफुसहुम, उन्होंने अपने आप को नुकसान में डाला। वदल्लान हुम मा कानु यफ्तरून, और जो बातें उन्होंने घड़ के रखी हुई थी, जो बहाने किए हुए थे कि हम अल्लाह ताला को ये कह देंगे वो बता देंगे, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा उनसे, सब कुछ भूल जाएंगे, सब गुम हो जाएंगे। ऐसा होता है ना, बाज़ूकत इंसान एक काम नहीं किया तो वो कहता है अच्छा मैं फलां को कह दूंगा, लेकिन होता है कि जब वो फलां सामने आता है तो सब बहाने भूल जाते हैं, और सिवाय उसको एडमिट करने के और कोई रास्ता नजर नहीं आता। अल्लाह की हस्ती के सामने किसको याद रहेगा कि वो बहाने करे और झूठ घड़ के बताए। दुनिया में तो हम टाल मटोल कर सकते हैं, वहां नहीं कर सकते। गुनाह में मुबतला होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम हर गुनाह की कोई तावील कर लेते हैं, जस्टिफिकेशन तलाश कर लेते हैं, लिहाजा तौबा ही नहीं करते, उससे निकलने की कोशिश ही नहीं करते। यही तावीलों के जाल वहां टूट जाएंगे, हकीकत सामने आ जाएगी, जिससे छुटकारा नामुमकिन हो जाएगा। ये जो दल्लान हुम मा कानु यफ्तरून है ना, ये बहुत अहम चीज है, इसी ने तो हमको।
1: इट्स 9:30 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: टेंशन्स। जब हो आपके पास Zong 4G की प्लस ऑफर, लेट्स गेट डिजिटल विद Zong 4G।
3: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती

0: जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: और कर रहे हैं जब अंजाम सामने नहीं, सामने अंजाम को दे ये सब कुछ न कर सकेगा, किसी की हिम्मत न होगी कि ऐसी बातें वहां खड़े होके बनाए और इन बातों की बिना पर वो अपने आप को छुड़ा सके, बचा सके। इन्होंने दो बातें की और बहुत अच्छी की हैं। एक तो ये कि इस चीज को जब हम पढ़ते हैं या पढ़ें तो इमेजिन करें, विजुलाइज करें, एक स्ट्रांग इमेजिनेशन हो और एक रियलिटी के तौर पर उसको लेकर खुद को वहां पर प्लेस करें। हम जब पढ़ते हैं तो हम क्या करें, ये तो किसी और की कहानी है, कोई और ही होगा वहां, हम तो पता नहीं कहां होंगे। हम इसी क्राउड में होंगे, इन तीन जगहों में से किसी एक पर होंगे। और फिर जितना ज्यादा आप अपने आप को वहां चलता फिरता देख सकें उतना ही बेहतर चेंज ला सकेंगे। दूसरी बात ये कि जब हम ये पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये काफिरीन जो है वो तो कोई काफिर लोग हैं, उनकी बात हो रही है। हालांकि अगर इसकी आयत 51 में आप देखें कि काफिरीन की सिफात क्या बताई गई, कि क्या वो नहीं बताई गई, क्या बताई गई, अल्लज़ीन तखज़ू दीनहुम लहवम वलैबा। काफिर का तो कोई दीन ही नहीं, ये तो दीन वाले हैं जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ज़राई मशीनरी तां कस्टम ड्यूटी ख़त्म कई, तामीराती शोबे तां बि टैक्स घटाया आहिनि। वफ़ाक़ी बजट पघारदार तबक़े सनअतकारनि ऐं एक्सपोर्टर्स लाइ आहे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाणे वारे ममलकती वज़ीर बिलाल अज़र कियानी चयो आहे त समूरनि शोबनि तां भार घटाइण जी कोशिश कई आहे। हीउ बजट पंहिंजो घर ठाहींदड़नि जी बजट आहे। घटि पघार खणंदड़ तां गुज़िरियल साल ई टैक्स घटायो हो, हिन भेरे बि रिलीफ ॾिनो आहे। वापारियुनि, एक्सपोर्टर्स ऐं शिपिंग इंडस्ट्रीज तां बि टैक्स घटायो आहे। बजट सां सनअतनि खे हथी मिलण सां गॾु रोज़गार जा ज़रिया बि पैदा थींदा।
1: कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आईन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाल के जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह है, तारीख के खराब रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बताओ लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाल के जमहूरियत की तरफ बढ़े, आइए मिसाल के मस्जिद की तरफ बढ़े। पाया है हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज अ जे इट इज नेवर टू लेट, आए बैठे मैं बातचीत में तैयार हूं।
0: ऐं वज़ीर आज़म हिकु भेरो ॿीहर अपोज़िशन खे मिसाक मैशत ऐं मिसाक जमहूरियत ते ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई छॾी। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त सियासत ऐं नज़रियो सभिनी जो पंहिंजो आहे, पर पाकिस्तान आहे त सभु आहियूं, असां सभु भाइर आहिनि, को बि जहिड़ो न आहे। पहिरीं बि अपोज़िशन लीडर जी हैसियत में मिसाक जमहूरियत ऐं मिसाक मैशत लाइ चयो हो, पर मुंहिंजे ख़लूस ते बदल आज खे रद्द कयो वियो। हाणे बि दावत ॾियां थो, अचो वेहो अॻिते वधो। चइनी सूबनि जी हिकु जेतिरी तरक़ी मुंहिंजो मक़सदु आहे। कानून लागू कंदड़ इदारा मुल्क जे अमुन लाइ ॾींहं राति कम कनि पिया। सदन ख़िदमत ऐं क़ुर्बानीनि जो एतराफ़ ऐं एतराम थियणु घुर्जे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज
3: जीए एफएम 91.6।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

मोहब्बत, मगर कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है, ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।

वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का

0: us. A product of Biocon International Pakistan.
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर
1: 7:45 AM
2: इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे अस्करी बैंक
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा अंधा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो 9:05 ते सिर्फ GFM 8
4: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
5: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
4: GAFM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज़।

रक्त से बिस्मिल जल्द आ रहा है। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
0: GFM 91.6।
2: It is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account, Bharosa Bhi, Raftar Bhi, Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
4: Ab aap sunenge GFM Network par KTN.
5: Jari khel bayan mein Bilawal Bhutto Zardari chewa ta asan har masle jo siyasi hal karan lai purazam aayu. Election Commission ka waqt ka ag chun schedule wapas karan jo mutalbo kar chuka hu. Al tawa hair shikayatun ji azare lai Fruit and Rice Council Asian Commission.

ईरान सां पिण मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं। अमरीकी सदर ट्रम्प जो ऐलान। सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां मुआदे ते सयूं थींदी आबन हुरमत सभिनी लाइ खुली वेंदो। सकून थियण बाद मुनासिब वक़्त ते एटमी मवाद जी बाक़ियात बि हासिल करे वठंदासीं। उमीद आहे त गाॾियुनि वारो समूरो अमल जल्द ऐं आसानी सां मुकमल थी वेंदो। असां ईरान ऐं विचोपर जे मुल्कनि सां गॾिजी कम करण जा मुंतज़र आहियूं। आबन हुरमत खुलण बाद G7 मुल्कनि सां गॾु बारूदी सुरंगूं साफ़ करण जो कम शुरू कयो वेंदो। असांजो मुआदो ओबामा जे मुआदे जहिड़ो न आहे। ईरान खे मुआदे वज़ का बि रक़म न ॾिनी वेंदी। ईरानी फ़ौजी अमरीकी सदर ट्रम्प जे अॼु मुआदे ते सयुनि वारी दावा रद्द करे छॾी आहे। ईरानी पासदारनि इनकलाब फ़ौज चवण आहे त ईरान पारां ॻाल्हियूं कंदड़ आचार ॼाणे कंहिं बि मुआदे ते सयूं न करण बाबति आगाह करे चुका आहिनि। सदर ट्रम्प सही वारी तकरीब पंहिंजी सालगिरह जे करे 14 जून ते करणु चाहे थो। ट्रम्प उन मूंखे अलामती अहमियत ॾेई पंहिंजे ज़ाती मशहूरी जो प्रोग्राम बणाए रहियो आहे।

कोनरी वेजो अदलस शख्स जो अंब जे वण मां फाहो लगल लाश थे सोरहां वाटर वट सिखू कोलीअ जो वण मां फाहो लगल लाश मिलियो। इतला ते पुलिस वाके वारे हंध पहुची लाश के अस्पताल मुंतकिल कयो। पुट किशन कुली चवणाए त वालिद खे गुज़िरियल ॾींहुं नशो करण खां मना कयो त हुन कावड़ जी आपघात कयो। ऐं पीर जो ॻोठ में शहरनि जो वधणु बदमनी ख़िलाफ़ थाणे अॻियां धरणो।

0: देखिए पागलखाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: ये

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna brightness. Chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और असली

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो ले।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 PM. This time check is brought to you by
3: Bankal Habib.

0: रिश्ता भरोसे का।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पॉलिथिन के मिसाक जमहूरियत आज कई, काश अवा उन वक्त मिसाक जमहूरियत वारी आज मनो हा।

ईरान ऐं अमरीका जंग जे ख़ात्मे लाइ मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं या न, अमरीका ईरान जे बयाननि ते सूरत हाल वाज़ी न थी सघी। अमरीकी सदर ट्रम्प जो चवण आहे त ईरान सां अमन मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं। मुआदे ते सयूं थींदी अबन हुरमत सभिनी लाइ खुली वेंदो। सकून थियण बाद मुनासिब वक़्त ते एटमी मवाद जी बाक़ियात बि हासिल करे वठंदासीं। ईरानी फ़ौज अमरीकी सदर ट्रम्प जे अॼु अमन मुआदे ते सयूं वारे दावा रद्द करे छॾी। ईरानी पासदान इनकलाब फोर्स जो चवणु आहे त कंहिं बि मुआदे ते सयूं न करण बाबति आगाह करे चुका आहियूं। सदर ट्रम्प सही वारी तकरीब पंहिंजे सालगिरह जे करे 14 जून ते करणु चाहे थो। ट्रम्प हुन मौके ते अलामती अहमियत ॾेई पंहिंजे ज़ाती मशहूरी जो प्रोग्राम बणाए रहियो आहे। रत ते रुबर सां हथियारबंदनि जी मोटरसाइकिल सवारनि ते फायरिंग, ॿ ॼणा मारिजी विया। घोट मीर मोहम्मद जलबाणी लाड़े वटि हथियारबंदनि ॿिनि ॼणनि खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। मक़्तूलनि जो 45 साल लालू जोयो ऐं 55 साल राजा जोयो तौर सुञाणप। लाश अस्पताल मुंतकिल। वाटसन चवणा त जतोई बिरादरी हथियारबंदनि नौजवान खे क़तल कयो आहे। आगिबसन बिरादरी जो हिकु अहलकार खे क़तल कयो वियो हो।

कुंडरी वेझो अदड़ो शख्स जो लंब के वण में फाव लगल लाश हथ सोरह वाटर वर्ट से कुकड़ी जो वण में फाव लगल लाश मिलो। इतला ते पुलिस बाकी वारे हंध पहुंची लाश के अस्पताल मुंतकिल कर पुट किशन कुली चवण है वालिद के गुजरल ढी नशो करण का मना कर उन कावड़ की आबकात कर।

खैरपुर में कची चगोट गुलशन मंगने के जवाबन जो पुलिस लड़ाई खिलाफ एहतजाज घोषण छोड़ा तो फैसला बंद बुढ़ो पुलिस बिना जवाब घर से चढ़ाई करे बंजुरा कई पुलिस औरतन बारन के तशद जो निशानो बनाए सामान खड़ी ढोर काए वही एसएसपी खैरपुर पुलिस जो जुर्म जो नोटिस वे इंसाफ फराम करें।

0: पीर जो गोठ में शहरन जो वधनल बदमनी खिलाफ थाने अगियां धरनो नारेबाजी शहर जो चवण है पीर जो गोठ ए भरपासे में बदमनी वधन सब मानू गैर महफूज आन कतल ए फुर्ज वाकया मामूल बणजी विया हुकूमत अमन बहाल कराए उडेर लाल में बिजली की ढिगी लोड शेडिंग ए वापा इंतजाम के नाकजन खिलाफ शहर जो एहतजाज शहर ए वापा परन बिजली के लोड शेडिंग खिलाफ स्टेशन रोड बंद कर छो शहर जो बिजली के असर बंद छो पीण के पानी जो बहरान पैदा थी वो है कारोबार में मुतासर थी रहा है बिना देर बिजली की ढिगी लोड शेडिंग जो खात्मो आने शहर के अजाब का बचाया वे आयसिन में पानी की शदीद खोट बरकरार आबादगार तबको सरापा एहतजाज बढ़ल टिकराटो के मुबारकपुर बमरी मंडल में पानी खोट खिलाफ आबादगार आहारन जो एहतजाजी मुजाहरों सन में मांझन तालुके के छछर पंपिंग स्टेशन की बंदिश खिलाफ आबादगार आहारन जो एहतजाज अगवान जो पानी की खोट सबब पोखियल फसल सड़ी रहा है जानवर बोंज वगे मर रहा है पानी की खोट खत्म कर आबादगार के परेशानी का बचाया वे
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ये जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर
2: का सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद
3: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत और वो भी बेहतर कीमत में पूरे 50 रुपए की बचत के साथ लाइफ बॉय शैम्पू कुदरती मजबूती का न्यू लुक
2: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड मजबूत तने लंबे और सेहतमंद मुंजरों के साथ पाकिस्तान में पैदावार और झाड़ देने वाला सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद

0: में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ स्मेल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब पालक से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर जनाब आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है कि किस तरीके कार को फॉलो करके आप ना सिर्फ अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए मेंटेन भी रख सकते हैं, खूबसूरती को हमेशा के लिए लव भी कर सकते हैं। वो खूबसूरती जो आपको मिलेगी वो हमेशा आपके साथ मौजूद कैसे रहेगी ये आप लोगों को इस प्रोग्राम में पता चलेगा। तो बिल्कुल सही बातें खूबसूरती की होंगी, साथ साथ आप लोगों के साथ बातें करती हैं जी बहुत ज्यादा वाली। प्रोग्राम में फन होता है, प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट होती है, प्रोग्राम में म्यूजिक होता है और बहुत कुछ होता है जो कि आप चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर हो। बिल्कुल जी, सब कुछ बताएंगे लेकिन साथ साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड आरजे एंड योर डीजे सिद्रा। नमस्कार, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और साथ ही साथ अपने हाल चाल बताते जा रहे हैं। सो डी लिसनर्स अंत के हालत कैसे है आपकी हालत? उम्मीद इन सदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपरकूल मूड के साथ सुपरकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता है ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं। तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होते हैं मेरी जान। और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा वाली मस्तियां करते हैं। तो 2 घंटे में आप लोगों के साथ मौजूद रहूंगी इस उम्मीद के साथ, इस प्यार भरी बातों के साथ साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो बिल्कुल सही, ये बातों के सिलसिले को जरा जो है ना आप पहुंचाया जाता है सिर्फ और सिर्फ व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बताएंगे जी, सब कुछ बताएंगे। यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों की ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त आने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला। बिकॉज आली रे आली सिद्रा आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के समय लाने के लिए। तो बिल्कुल आपकी होंठों पर 440 उल्के समय लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी आज एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा सा कलाम सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। पूरी 3 बजे तक आप सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत होती जा

और क्या ही प्यारा कलाम मैंने लिस्ट में लगाया है, और इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें चलें जनाब के प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात हो, जरा इसी बातें आप लोगों को बताया जाएगा और आप लोगों को जरा जो है ना वो एजुकेट किया जाता है इस मामले में कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो उस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, यानी कि नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और नॉलेज भी फुल वाली, हाफ नॉलेज होती है ना वो डेंजरस होती है, तो फुल नॉलेज जो है ना वो हासिल किया करें और हमारा प्रोग्राम सुना करें ताकि आप लोगों को ये पता चले कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनका इस्तेमाल आप लोगों की खूबसूरती को कैसे बढ़ाएगा। ओके जी, तो बढ़ते ही प्रोग्राम को जरा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ तो वो जरा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो टॉपिक आज के प्रोग्राम का कुछ इस तरह से होने वाला है, जैसे मैंने कलाम आप लोगों को सुनाया कि दुनिया मतलब की है, ये तो हम हर कोई कहते हैं, ये तो हमने सुना भी है हर किसी से कि आगे से इंसान बोल रहे होते हैं कि दुनिया मतलब की है, हम खुद भी कह रहे होते हैं, हमने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है। तो मुझे जो है ना आपने ये बताना है कि जबकि हर कोई अगला इंसान हमें ये कहते हुए जो है ना हम उसे सुन रहे होते हैं कि दुनिया मतलब की है, तो मुझे जरा आप ये बताएं कि जब सारे लोगों के साथ दुनिया में मतलब चल रहे हैं, हर किसी के साथ ठगियां चल रही हैं, तो ठगी कर कौन रहा है, ये मतलब निकाल कौन रहा है, वो कौन है जो सच में जो है ना वो मतलब ही है। यानी कि ऐसा तो कोई नहीं कि हमें आखिर किसी ने ये बोला होगा भाई माँ मतलब ही आया, हाँ माँ माणस ठगियों कहूँ है, माँ वो इंसान आया जेको मतलब वारो कम कंदो है, सो मुख्यता यो बुधाय जेको आप यो बुधायण तो तवहां की नजर में वो केर इंसान आहे जेको तवहां के लगे तो वाकई

मतलबी आए, या फिर जेके माण्हू ज्यादातर ईअं चवंदा आहिनि त दुनिया बाबा मतलब जी थी वई आहे, त वाकई छा उहे माण्हू मतलब ई हूंदा आहिनि? तो बहुत सारी बातें जो कि आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बहुत सी बातें जो कि आप लोगों के साथ हम आप लोगों से सुनने वाले भी हैं, ठीक है? तो आप जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और मुझे बताएं कि वो कौन लोग हैं जो मतलब ही होते हैं। हाँ जी, और इसी के साथ साथ जो है, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LR के सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, तो जीए लाड़काना FM 88.8 जो है ना हमारा पेज है। अगर आप जीए लाड़काना FM 88.8 सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। पेज पर आइए।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज़
3: GFM 91.6।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हमारे साथ सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरेंड, मेहरापुर, मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सदराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास लाते जा रहे हैं और जनाब प्रोग्राम का हिस्सा बनकर प्रोग्राम की रौनकों को मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। तो बढ़ाइए जी प्रोग्राम की रौनकों को, बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रौनकें तो बढ़ाएंगे लेकिन खूबसूरतियां कैसे बढ़ाई जाती है, इसके ऊपर जरा ये मुद्दा एक अहम मुद्दा है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं या फिर आप खवातीन हैं, टीनेजर्स हैं या फिर वो लोग जो कि अपनी स्किन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहली बात घबराना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मार्केट में व्हाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। जब मार्केट में व्हाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं तो समझ लीजिए कि छा चुके हैं। और जब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र आता है तो मैं तो भाई बाग बाग हो जाती हूँ क्योंकि इतनी अच्छे प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं जिनमें आप लोगों के लिए यानी कि हर एक इंसान के लिए प्रोडक्ट तैयार है। यानी कि ऐसा नहीं कि अब आप सोचेंगे कि भाई जान मेरी टाइप वाला प्रोडक्ट तो है ही नहीं, हर तरह का प्रोडक्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जो जो एक इंसान की नीड होती है ना, मतलब वो सारी चीजें इन्होंने समझकर और सारी चीजों के ऊपर स्टडी करके फिर ही इन्होंने आप लोगों के लिए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो है ना वो तैयार किया है। व्हाइट एज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे आप इस्तेमाल करेंगे और ना सिर्फ आपकी खूबसूरती बढ़ती है मेरी जान बल्कि आप लोग बहुत ज्यादा हसीन हो जाते हैं। बहुत ज्यादा हसीन से मुराद ये कि अगर आपकी स्किन जो है वो रूखी सूखी हो चुकी है, आपकी स्किन डल हो चुकी है, आपकी स्किन के ऊपर जो है ना वो दाने आ चुके हैं या फिर आप लोगों के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसको लगाने के बाद आप फ्लेक्स कर सकेंगे भाई जान देखो मैं मेकअप नहीं लगाती हूँ। अगर आप भी मेकअप नहीं लगा पाते हैं, गर्मियों का सीजन है और आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट नहीं है, तो भाई व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट से ना बताते हैं कि किस तरीके कार को फॉलो करके आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहली बात जो है वो ये कि आप लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट मौजूद है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो अगर हम बात करें व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की, तो सबसे पहले हम व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम है जो कि नाइट क्रीम है, उसके साथ आपको डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मिल रहा है जो कि एक्नीज के खात्मे के लिए है। यानी कि दाना अगर तमाम चेहरे थे मौजूद आयन तमाम की तमाम खत्म करी सको था, न सिर्फ दाना मजीद आयन भी चीजों बुधाया थे कि व्हाइट एसी लवली क्रीम तमाम लाइ मौजूद है। व्हाइट एज जी लवली क्रीम जगह ही फेयरनेस क्रीम आई नाइट क्रीम है फेयरनेस क्रीम में छा डिफरेंस हूं ये बुधाया थी। आई व्हाइट एज जो साबुन आए तमाम वट व्हाइट एज जो फेस वॉश आए तमाम वट ठीक है। आई लोशन भी आए व्हाइट एज वारन जो हेयर रिमूवल जो लोशन भी आए ठीक है। ये तमाम प्रोडक्ट्स आए जगह तमाम की इजिली किथां भी मिली सकन था, तमाम बस पांजे करीबी जनरल स्टोर से वनो था उतना नालो वठी करी तमाम तलब कयो था तमाम के नथा मिलन तो उन जो हल भी आए तमाम जे लाए नंबर आए जेते तमाम डायल करी नंबर के उन ते कॉल कयो मैसेज कयो उनन के दसो तो बाबा फलानी जगह ते कोन था मिलन तमाम जा प्रोडक्ट अवेलेबल कराए छियो तो बिल्कुल अवेलेबल कराइंदा। ये नंबर आहे 0315799 0595 नंबर ते रावतो कयो अगर तमा भी चाहियो तमा जे एरिया में मिलन घुर्जन व्हाइट एज प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सी अगर अस व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जी गाल कयो तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जगह तमा जी खूबसूरती के बताई दिया है। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जगह हिकड़ी नाइट क्रीम आहे जगह तमा रात जे टाइम इस्तेमाल करी सको था तमा जी स्किन के फ्रेश बनाईंदी फेयर बनाईंदी तमा जी स्किन जी हिफाजत कंदी और इन सभी चीजों का जेकी तमा जी स्किन के खराब करण में जेको ना अहम किरदार अदा कंदा आहे। अगर तमा जी स्किन ते काफी झुरियूं अची वयूं आहिनि या डार्क सर्कल्स वधी वया आहिनि या फिर तमा जी स्किन जेका मुरझायल लॻे थी त तव्हां व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो बाबा। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल खां पोइ तमा जी स्किन सफ़ा फ्रेश थी वेंदी, ग्लोइंग थी वेंदी ऐं तव्हां जवान थी वेंदा। छो त व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदर एवोकाडो मौजूद आहे, मिल्क मौजूद आहे ऐं जेको न एलोवेरा मौजूद आहे। ही सभु चीज़ूं एड करे पोइ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम खे तयार कयो आहे ऐं व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हां व्हाइट एज ब्यूटी सोप इस्तेमाल कंदा या वरी फेस वॉश इस्तेमाल कंदा। इन्हनि ॿिन्ही चीज़ुनि मां जंहिंमें बि तव्हां कम्फर्टेबल आहे उहा चीज़ तव्हां इस्तेमाल कयो। अगरि तव्हां साबुण हणो था त तव्हां साबुण हणंदा, अगरि तव्हां क्रीम हणो था त तव्हां क्रीम हणंदा। खोड़ सारा माण्हू जेके मूंखे चवंदा आहिनि त भाजी असां क्रीमूं कोन हणंदा आहियूं, ॻाल्हि ते सिधी त बाबा मूडा बि ॻाल्हि सिधी अथव, तव्हां साबुण ऐं तव्हां फेस वॉश लॻाए ॾिसो था सही आहे। ॿ चीज़ूं आहिनि जेके तव्हांजे कम जूं आहिनि। साबुण ऐं फेस वॉश त कॉमन ॻाल्हि आहे, हर कोई इस्तेमाल कंदा, बेसिक नीड आहे हर एक इंसान जी। त तव्हां अगर क्रीम नथा लगायो तो तुम्हां साबण ऐं फेस वॉश लगाए सघो था। ठीक आहे, ही कुछ अड़ा प्रोडक्ट हुंदा आहिनि जेके तव्हां एनी हाउ लगाई सघो था। यानी कि अगर तव्हां जी जरूरत जेका आहे, तव्हां जी स्किन खे जेको आहे न जरूरत हूंदी आहे बाबा पंहिंजी, तव्हां केयर कंदा कयो, सेल्फ केयर ॾाढी ज़रूरी शइ आहे। सो तव्हां पंहिंजी स्किन जो ख़्याल रखो, तव्हां साबुण लॻायो, उन सां फेस वॉश कयो, वाइटेश प्यूरी सोप सां तव्हां वाइटेश जो फेस वॉश लॻाए सघो था जेको वाइटमिन सी सां तयार थियल आहे, ऐं साबुण जेको आहे उहो एवोकाडो मिल्क ऐं एलोवेरा सां तयार थियल आहे। ठीक आहे, ही सभु चीज़ूं आहिनि जेके तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदियूं। ऐं हाणे असां ॻाल्हि कयूं अगरि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जी, त डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ तयार कयो आहे जिन जे चेहरे ते न दाणा हूंदा आहिनि, एक्नी आहिनि, एक्नी जी वजह सां तव्हां अगरि परेशान आहियो त बाबा परेशान थियण जी का बि ॻाल्हि कोन्हे। का छो त मार्केट में डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आयो आहे जेको आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे, जेको तव्हांजे एक्नी सां फाइट कंदो आहे। सिर्फ़ एक्नी न बल्कि तव्हांजे चेहरे ते अगरि निशानात आहिनि, तव्हांजे चेहरे ते कोई कट जो निशान आहे, कोई सड़न जो निशान आहे, कोई अहिड़ो निशान आहे जेको सदियुनि खां वठी हले पियो तव्हांजे चेहरे ते, तव्हां हिन खे रिमूव करणु चाहियो था पर थिए न पियो, त उन लाइ तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु करे सघो था। हिकिड़ो वाहिद ट्यूब आहे जेको न सिर्फ़ तव्हांजी स्किन खे जेको आहे न क्लियर बणाईंदो आहे बल्कि तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि कंदो आहे। ऐं तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसो, मर्द मायूं सभी हणी सघंदा। ठीकु आहे, उन खां अलावा वाइटेश जो लवली ट्यूब आहे, वाइटेश जो लवली जेको ट्यूब आहे, मतिलबु आहे त ट्यूब, हिन खे क्रीम बि चई सघिजे थो। उन खां अलावा वाइटेश जेका लवली क्रीम आहे, हीअ रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन सां तयार थियल आहे, जिन जे अंदरि टीह वाइटमिन जा कैप्सूल आहिनि। वाइटमिन B3 आहे, वाइटमिन ई आहे, वाइटमिन सी आहे, वाइटमिन डी आहे, ऐं गॾोगॾु सनस्क्रीन बि एड थियल अथसि। हीअ हिकिड़ी जेको आहे न फेयरनेस क्रीम आहे, फेयरनेस क्रीम उहे माण्हू इस्तेमालु कंदा आहिनि। यानी कि हिन में फ़र्क़ु इहो हूंदो आहे त नाइट क्रीम तव्हां राति जे टाइम इस्तेमालु कंदा आहियो, हिन में थोरो एज लिमिट बि हूंदो आहे, तव्हां 8 सालनि खां पोइ इस्तेमालु करे सघो था। बाक़ी फेयरनेस क्रीम जी अगरि ॻाल्हि कई वञे त हिन खे बाबा ॿार, बच्चा ऐं जेके कुराड़ा माण्हू आहिनि, जवान आहिनि, हर कोई इस्तेमालु करे सघो थो। इहे तव्हांजे मेकअप जो जेको आहे न कमु कंदी, अगरि तव्हां पंहिंजी स्किन ते ग्लो चाहियो था, या अगरि तव्हां चाहियो था त बाबा गर्मी जे मौसम में केरु मेकअप लॻाईंदो, अगरि तव्हां कारे जॉब कयो था, कारे वञो था, कोई कम कार आहे, कोई भी कम आहे, तव्हां ॿाहिरि वञो था त तव्हां वाइटेश लवली क्रीम जो इस्तेमालु करे पोइ तव्हां ॿाहिरि निकिरो। इन सां फ़ाइदो इहो पवंदो त बाबा तव्हांजी स्किन ते जेको आहे न ख़ूबसूरती बि ईंदी, तव्हांजी स्किन स्किन प्रोटेक्ट बि रहंदी। उहो कीअं? छो त हिन जे अंदरि सनस्क्रीन एड थियल आहे। सनस्क्रीन तव्हांजी स्किन ते जेके ही सिज जा किरणा पवंदा आहिनि, जेके ख़तरनाक हूंदा आहिनि, उन्हनि खां तव्हांजी स्किन खे बचाईंदी आहे। सो वाइटेश लवली क्रीम तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो, जीअं तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हां सां हमेशा बरक़रार रहे, ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे मिले, ऐं उहा ख़ूबसूरती मिले जेका तव्हां हमेशा हासिल करणु चाहियो। आयो पया सो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तव्हांजे हर ॻोठ में, तव्हांजे हर शहर में हर एरिया में मिलण लाज़मी आहिनि। मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त तव्हां हर जॻह

ఒక చేసి ही गार हुई वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट से मुंह मां का पुछो वाइस तमा के छातो लगे जे दोरे कोई मतलब ही के रहा है यानी कि वो कौन है जो मतलब ही है हर किसी से हमने सुना है लोग कहते हैं भाई जमाना मतलबी हो चुका है हाँ जी तो बताएं कौन है मतलबी क्या उसकी ऐसी निशानियां हैं कि हम समझ पाएंगे ये वाला इंसान मतलबी है अगर बताइए मुझे जल्दी से और इसी के साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए आप कहां से हमें सुन रहे हैं बताइए अच्छा साहिल खान हमारे साथ ही साहिल खान वालेकुम अस्सलाम वेलकम कहते हैं कल मैंने आपको बोला था कि खुदा मोहब्बत का गाना चलाइए बिल्कुल मुझे आज याद है आपके लिए गाना लगाएंगे बस आप हमारे साथ मौजूद रहिए ओके जी अब्दुल गफूर कैसर हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गफूर कैसर आपको खुश आमदीद कहते हैं मीर बेवस हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून अशफा कहते हैं उन्हें भी दिया हुआ जैसे गुजरी गया हाँ जाहिर सी गाला है और आबिद बस आगे का क्या लिखा हुआ ये समझ नहीं आ रहा है सो आबिद आपको वेलकम करते हैं अच्छा मोहम्मद समान भाई हमारे साथ मौजूद है वेलकम मोहम्मद समान भाई कहते हैं व्हाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो आहो एम अंसारी लिखते हैं संडे के दिन भी आ गई आप वाह साड़ी नींद चोरी हो गई हुण की करें कुड़िए संडे वाले दिन तो मैं आती हूँ बस जुम्मे को छोड़कर जुम्मा नहीं आती बस संडे वाले दिन तो मैं आती हूँ नींद को गोली मारो एंजॉय करती हूँ

ओके ने किशोर भाई हमारे साथ कहते हेलो हाई अद्दा खुशायो हैप्पी संडे वेलकम प्यारे भाई. उबेद सहदो हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बॉस जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं? किशोर भाई कहते हैं टॉपिक हम सब करते हैं, हम सब मतलबी हैं, ये झगड़ा होना चाहिए ये बात एक्सेप्ट करने में. अच्छा उबेर कहते हैं इतना मुश्किल टॉपिक सच्ची बताएं. सैयद फारूक कहते हैं बाजी मेरी भी एक फरमाइश है, सॉन्ग सुनाए. ये केड़ो गानो आ है.

प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन जी आपके सिद्धराम के साथ मौजूद है। मैंने आप लोगों से पूछा है, मुझे बताइए मतलबी आज के दौर में कौन है, कैसे पहचाना जाए कि अगला इंसान मतलबी है, बताइए मुझे जरा। किशोर भाई कहते हैं आजकल कोई एक शख्स नहीं बचा जो मतलबी ना हो। अशफाक कहते हैं कि मतलबी माँ पानी आया, हर को मतलबी आया, क्या बात है। उबेद कहते हैं अल्लाह माफ करे आसान त न आई हूँ बाबा मतलबी, तव्हां त अॼु शर्मिंदा पया कयो सभिनी खे। न न मां त पुछां भई न।

पूरी पोस्ट को लाइक और शेयर करिए। और साथ साथ सैयद फारूक कहते हैं जो क्लोज होते हैं वो मतलबी होते हैं। अच्छा, ये नई बात पता चली हमें। और एहसन अरबाड़ी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम एहसन, शाला तानो खुश आयो। नाजिक अली हमारे साथ वीआईपी शो, थैंक यू नाजिक भाई। और ये एम अंसारी कहते हैं टॉपिक पर जो सेल्फिश है वही मतलबी है, अना परस्त और खुद परस्ती मतलबी। केतरो समझा थो बार थी, अच्छा मुखे समझायो था सही सही मानी वनी थी वही आया। इकबाल लाशरी हमारे साथ मौजूद है। हेलो इकबाल भाई, कैसे हैं?

उबेर कहे पई ऐं अवां जो टॉपिक त अॼु ॾाढो भलो ऐं मुश्किल बि आहे पर असां बाबा सिधा सादा माण्हू आहियूं त कूड़ न ॻाल्हाईंदासीं थी सघे थो त किथे न किथे असां बि मतलबी हुजो ओ इहा ॻाल्हि कई न कम जे ॻाल्हि चलो अच्छी बात है ये कबूल करना ही बहुत बड़ी बात होती है और उन खां अलावा अच्छा मुलाई मुजाहिद बोजार के दी टॉपिक अला ना करिए सिद्रा जी आप पर बुरा वक्त आए उस वक्त आपको पता चलेगा मतलबी कौन से लोग हैं मुझ पे बुरा वक्त आया था उस वक्त मुझे पता चला कि मतलबी लोग कौन से थे कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने मेरा साथ दिया बाकी मतलबी लोग सामने आ गए ये तो अच्छी बात है ये बिल्कुल सही बात आपने हमारे साथ शेयर कर दी कि बुरे वक्त आने पर ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया अच्छा दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम स्वीटी कहती है वेलकम टू शो में भी आ गई शो में क्या बात है वेलकम ओके जी सो आप इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर नहीं आप हमारे साथ शेयर करते जा रहे हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो

0: अब आप सुनेंगे
1: नारी की आवाज
2: 91.6
3: It's 2 PM. This time check is brought to you by
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
0: अब आप सुने जीएफएम नेटवर्क पर
5: वक़्तु पूरी दुनिया

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध।

तो आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खान. मटियारी सकरेन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं खूब

9990595 ये नंबर आपकी आसानी के लिए है, आप डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आसानी परचेज कीजिए। इसी के साथ साथ आप लोगों को पहले मैंने व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, सो अभी आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इतनी सी बात है जो कि आप लोगों ने जाननी है। ये जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार की गई है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट है और वाइटामिन ई बीड्स के साथ तैयार किया गया है। माइक्रोबीट फार्मुलेशन है इसके अंदर जनाब। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इससे परफेक्ट प्रोडक्ट आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिल सकता। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, किसी भी प्रोडक्ट का इंतखाब करना है, तो उसके अंदर ये चीज आप देखा करें कि वो प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए है या नहीं, क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो वो ऑल स्किन टाइप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हुई, नॉर्मल हुई, कॉम्बिनेशन टाइप हुई या किसी भी तरह की आपकी स्किन हो, तो उसके ऊपर आप इजीली जो है ना वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सके। तो जल्दी जल्दी से आप सारे लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो नंबर आपको पहले से बता चुकी हूँ, जिसके ऊपर आप राबता करके जो है ना इजीली अपने एरिया में

0: ओके अदा जी जी तव्हां थोरी जॻहि सही ते बीहो तव्हांजो आवाज़ कटिजे थो ॾाढो हाणे अचे थो ॿुधायो अलाए छा पिया चओ जी जी कहिड़ो कलाम ॿुधंदा चलो ठीकु आहे कलाम समुझ में कोन आयो ऐं किथे अहिड़ी जॻहि ते बीह करे कॉल कंदा कयो जिते तव्हांजो आवाज़ सही ईंदो हुजे ठीकु आहे ऐं कॉलिंग नंबर आहे 0332132128 नेक्स्ट कॉल ॾिसूं केरु मौजूदु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम अॼु लॻे थो वरी नेटवर्क जो इशू हलो हलो हा
1: जी छा भेण ठीकु आहियो
0: अलहमदिल्ला फारूक भाई असां सां गॾु मौजूदु आहे
1: जी जी बिल्कुलु इशू असांजे अचण सां इनशाला सोल्व थी वेंदो
0: सफ़ा हाणे तव्हांजो आवाज़ मज़े में तव्हां ॿुधायो ख़ुशि आहियो सफ़ा
1: अलाह पंहिंजा लख एहसान दुआऊं करी रब जी सोरी पुट पहिरियों ॿुधां पियो
0: जी
1: लाइट आई त तव्हांजो एफएम में गुम थी वियो
0: अरे ईअं छो भला लाइट ते त सही हलणु घुर्जे न गुम थी वियो चलो मूंखे फारूक भाई

ओके जी, सो तव्हां इस्तेमालु कयो पिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम कयो पिया नी, मूंखे ॿुधायो अगरि तव्हां नथा इस्तेमालु कयो त बाबा तव्हां इस्तेमालु कयो, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदी आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि जेको आहे न वाइटमिन ई बीड्स आहिनि, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन सां तयारु कई वई आहे, डॉक्टर्स जी निगरानी में तयारु थियल आहे ऐं जनाब सिर्फ़ ॿिनि रातिनि जे इस्तेमाल में तव्हांखे ॾींदी सफ़ा वी आई पी रिज़ल्ट। सो तव्हां इस्तेमालु करे ॾिसो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी, तव्हां बि थी वञो सुहिणा सुहिणा, प्यारा प्यारा, मिठा मिठा।

बहुत ही प्यारा गाना आप इंजॉय करिए। साथ साथ हमारे पास ही कुछ पैनल के मैसेजेस हैं तो वो पढ़ लेते हैं और इसी के साथ साथ टाइम के हमारे पास मीरपुर खास से अब्दुल्ला बहर हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते बाजी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है क्या बात है अब्दुल्ला भाई आपको वेलकम करते हैं। बशीर लिगारी हमारे साथ है गोठ मीर खान लिगारी वालेकुम अस्सलाम।

माशाल्लाह माय बेस्ट आरजे सदफ की आले शो मस्त मस्त है। टॉपिक वो शैतान है जो ऐसा करवाता है इंसान तो बेस्ट होता है ना बाबा, यह गलत गल है। यानी मानू है जो एडो कुछ कन पे तो ये शैतान कराए तो मानू जो को भी हथ को बाबा मानू पान वो शैतान आज के दौर में। और साइम अमीर कहती है सिदरा निगत नाज प्ले करें, निगत नाज हलायू था आज जरूर सोनी जिला। और ये मेरे साथी अस्सलाम वालेकुम, आज सिदरा आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, बताओ आप कैसी है, हम आपको दिल से वेलकम करते हैं। इमरान अली बिरोही भाई लाड़काना से मैं सुन रही हूँ, क्या बात है इमरान भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सजाद अली जमाली है सिटी नवाब शाह, शो इज नाइस, सॉन्ग प्ले कीजिएगा मुमताज मोलाई। ओके मैं कोशिश करती हूँ मुमताज मुलाई लगाएंगे। थैंक यू, आप सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, आप लोगों के साथ बातें करते हैं, आप लोगों के मैसेजेस पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए गाने लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं। तो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं। सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: इस फोन के कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है, ये तो देखो।
2: एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिया?
3: मेरी तरफ से गिफ्ट।

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती ज़हन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: तुम एक खोखली औरत हो, मर्दों से दिल लगी करने वाली।
0: अगर मेरे बेटे को ये ना मिले ना तो मैं पागल हो जाएगा।

लेटेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइएगा. और इसी के साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो साथ साथ डायल करते जाइएगा 03 15 799 0595.

सोनो भी सोनो आ कीअं न हुजे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल जो करे पियो अगरि तव्हां बि सोणा थियण चाहियो था त तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां अगरि तव्हांखे डी स्किन फेस वॉश बि मिली रहियो आहे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो डी स्किन फेस वॉश लॻायो पंहिंजे ख़ूबसूरती खे चमकायो ऐं हमेशह जे लाइ ख़ूबसूरत थी वञो हुन खां अलावा जेको असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सखर मोरो मिरपुर ख़ास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली ऐं लाडकाणे वारा बि सो जनाब बिल्कुलु प्रोग्राम जी लास्ट लिंक में असां मौजूदु आहियूं सो तव्हांखे चवंदा भली कार ख़ुशि आमदीद तव्हांजो मोहबत

अच्छा सजाद अली जमाली भाउ असांखे जेको आहे न गाने जी फरमाइश कई हुई सो असां ही गानो ॿुधोसीं हुन खां अलावा ॿियो गानो असांजी लिस्ट में मौजूदु आहे जेको निगत नाज़ी आवाज़ में आहे ऐं हिन गाने जी फरमाइश असांखे साइमा मीर कई आहे।

वैसे ये हकी करता है। ओके जी, अब्दुल्ला महर भाई ऐसा सगर मौजूद है। अब्दुल्ला महर भाई तव्हां वाइटिश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो पिया, सो मोहबतूं आहिनि सोणे भाजूं। उन खां अलावा ऐसा सगर आहे, मतलब ही माण्हू खां उहो खुलियो दुश्मन भलो, छो जो अंदर बंद पोश माण्हूअ खां अलाह पनाह में रखे तव्हां खे ऐं असां खे। आमीन। अलाह ॾिनो बमरो भाई हमारे साथ फ्रॉम नबीदाद बमरो खां, अलाह ॾिनो भाई तव्हां जो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया। और ये हमारे साथ हेलो सिद्रा मक़सूद मलाह हमारे साथ जी, मक़सूद मलाह आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ हैं शोनी, कहती हैं आपकी जान में भी आ गई आपके साथ। अच्छा शोनी प्यारी प्यारी, आप जरा अपना ख्याल रखिये।

वाह वाह वाह वाह, राजा खान भाई कहते सिस्टर बड़े वक्त में पता चल, बुरे वक्त में पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। या बिल्कुल तमाम सही गाल कही है राजा भाई। वसु भाई कहते अदी से जो जवाब मतलब ही वो होंदो आहे जेको पंजो कम कडी पोए वरी बीहर दिसंदो भी ना है। ओ या गाल बिल्कुल सही जयव। उनका अलावा किशोर भाई कहते अदी मुझी ख्वाहिश आहे कराची में क्रीम तू पान खणी अच। चलो मां ईंदम त खणी ईंदम। उनका अलावा ये हमारे साथ हैं जी आदिल कहते हैं कि जवाब मतलब ही केर आहे, मतलब जी गाल कंदो हमेशा जडे हुन जो कम हुजे त भाव भाव चवंदो आहे, कम मुकियो त सलाम भी न वठंदो आहे, ऐं सिर्फ़ फ़ाइदो ॾिसंदो आहे। हू तव्हां सां दोस्ती दिल सां कोन कंदो आहे, मतलब सां कंदो आहे। हिन लाइ तव्हां जी क़ीमत कोन्हे, हुन जो कम क़ीमती आहे। मुश्किल में न मिलंदो अव्हां खे, इहा हक़ीक़त आहे। जॾहिं तव्हां खे हुन जी ज़रूरत हुजे त बेज़ारी आहियां चवंदो आहे, पर जॾहिं हुन खे कम हुजे त राति ॿ वॻे बि फ़ोन कंदो आहे। शुक्र न कंदो आहे। तव्हां केतिरी बि मेहनत कयो हुन लाइ घटि आहे, हू हमेशा वधीक घुरंदो आहे, पर पाण कॾहिं कोन।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GH नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक भी
1: दिल्ली के टुकड़ों से
0: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 PM. This time check is brought to you by
3: जने माँ पांचो ख्याल
4: कोई गलती हो गई हो तो मैं हासरत ख्वाह हूँ। कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दिया हो जो आपको अच्छा।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नई का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू सुगर खा पी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारो डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर।
1: पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अवैध आजाद कश्मीर में जारी बेचैनी पाकिस्तान जिस साख के नुकसान ले रही है। इसरत हाल दुश्मन अंसर भारत आई इसराइल गठजोड़ के पैजा मकसद हासिल करने में गैर जरूरी मौको फराम कर रही है। जारी कल बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी चौथे वक्त पूरी दुनिया जो ध्यान पाकिस्तान तरफ आए। इस्लामाबाद मुआदे से सयू पाकिस्तान लाए तारीखी लम्हो हों सियासी शिकायतन इख्तिलाफन जो हल जमहूरी आइनी ए पुरमन जरिये में करण घुर्जे। पार्लियामान ए सियासी अमल मसला हल कर मुनासिब फोर्म्स आन अस हर मसले जो सियासी हल कर पुरजम आयो। इलेक्शन कमीशन का वक्त का अग चूंड शेड्यूल वापस करण जो मुतालबो कर चुका आयो। इल्तवा हेट शिकायत के अजल लाए ट्रूट एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करण की कोशिश कंदी। सदस्यभा वाले वफाकी वजीर अताउल्ला तारण चयाद समूरी दुनिया कबूल कर पाकिस्तान अमुंडा किरदार अदा कर अज कौमी झंडे की इज्जत है। मैशत भी दुरुस्त रस्ते से गामजन है। जिते मुल्क की इज्जत की गाल हुए उते पैंजी जात की इज्जत महसूस करण घुर्जे। वफाकी वजीर कौमी असेंबली में बजट सेशन के खिताब कन्दे बजट से तनकीद एतजाज अपोजिशन जो हक है पर हाकारी कदम की वाखाण थे घुर्जे। समूरन शोबन से मुशावरत बाद बजट तैयार कई वही हर तबके के फायद पहुंचाया वो। पीटीआई वारन आईएमएफ के खत लिखा तो पाकिस्तान के कर्ज न डो वे आईएमएफ के लिखल खत तारीख जो हिस्सो आन। शहबाज शरीफ डी रात मेहनत न करे हा तो मुल्क दिवालो थी चुको हो हा। वजीर आजम शहबाज शरीफ बीहर अपोजिशन के मिसाक जमूरियत की आज कई काश अवा उन वक्त ई मिसाक जमूरियत वारी आज मनो हा। नायब वजीर आजम मिसाक डार जो मिस्र ए तुर्क पडे वजीर से फोन से राबो खिते के तब्दील सूरत हाल के ख्याल की देवट कई वही पर डेई तर्जमान मौजूद गाल बोल दौरान अमरीका ईरान विच में मफामत लाए हाकारी अकबराई की आजिया हाकारी अकबराई से खिते में चटदार अमन जो रस्तों खुलने की उम्मीद जाहिर कई। अगवाणन जो थन्दड़ अकबराई के हवाले से राबते में रहने इतफाक

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वफाकी हुकूमत जो बजट 2026-27 में ज़रखेज स्कीम तहत 70,50,000 नंढन आबादगारन के 300 अरब रूपयनि जा बिना व्याज कर्ज फराहम करण जो ऐलान। बजट दस्तावेज़ मूजिब ज़री मशीनरी लाइ 5 अरब रूपया सब्सिडी लाइ मुख़्तस कया विया। 12 एकड़ खां घटि ज़मीन मालिकनि खे 1500 रूपया फ़ी एकड़ सब्सिडी फराहम कई वेंदी। भाण जा अघ घटि रखण लाइ भाण कंपनियुनि खे 20 अरब रूपयनि जो पैकेज ॾिनो वेंदो। मौसमियाती तब्दीलीअ खे मुंहुं ॾियण ऐं ज़री शोबे खे नुक़सान खां बचाइण लाइ आलमी बैंक जी मदद सां 20 करोड़ डॉलर मुख़्तस कया विया। सुद समा वारे फाकी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त समूरी दुनिया क़बूल कयो त पाकिस्तान अमुन लाइ किरदार अदा कयो आहे। अॼु क़ौमी झंडे जी इज़त आहे, मैशत बि दुरुस्त रस्ते ते गामज़न आहे। जिते मुल्क जी इज़त जी ॻाल्हि हुजे त उते पंहिंजी ज़ात जी इज़त महसूस करणु घुर्जे। वफ़ाकी वज़ीर क़ौमी असेंबली में बजट सेशन खे ख़िताब कंदे वधीक चयो त बजट ते तनक़ीद ऐं इख़्तिलाफ़ जो हक़ आहे, पर हाकारी क़दमनि जी वाखाण थियणु घुर्जे। समूरनि शोबनि सां मुशावरत बाद बजट तयार कई वई, हर तबिके खे फ़ाइदो पहुचायो वियो। PTI वारनि IMF खे ख़त लिखिया त पाकिस्तान खे कर्ज़ न ॾिनो वञे। IMF खे लिखियल ख़त तारीख़ जो हिसो आहिनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी पाकिस्तान जी साख खे नुक़सान ॾेई रही आहे। अहिड़ी सूरत हाल दुश्मन अंसर भारत ऐं इसराइल गठजोड़ खे पंहिंजा मक़सद हासिल करण में ई आहे। इस्लामाबाद मुआदे ते सयूं पाकिस्तान लाइ तारीख़ी लम्हो हूंदो। सियासी शिकायतनि ऐं इख़्तिलाफ़नि जो हल जमहूरी पुरमन ज़रियनि मां कढणु घुर्जे। पार्लियामान ऐं सियासी अमल अहिड़ा मसला हल करण लाइ मुनासिब फॉर्म्स आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो मिस्र ऐं तुर्क परडेही वज़ीरनि सां फोन ते राब्तो, खिते जी तब्दील ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। परडेही तर्जुमान मूजिब ॻाल्हि ॿोल्हि दौरान अमरीका ऐं ईरान विच में मुफ़ाहमत लाइ हाकारी अगभराई जी आचियां। हाकारी अगभराई सां खिते में जटादार अमन जो रस्तो खोलण जी उमेद ज़ाहिर थी आहे। अॻवाननि जो थींदड़ अगभराई जे हवाले सां राब्ते में रहण ते इतफ़ाक़। कतर जे वफ़द पारां तहरान जो दौरो। ईरानी मीडिया मूजिब कतरी वफ़द ईरानी अख़्तियारनि सां गॾिजी इसराइल सां जंग जी ख़ात्मे ते ताज़ी अगभराई जो जाइज़ो वरितो। दौरे जा वधीक तफ़सील साम्हूं न अची सघिया। ईरान जी बयानुनि मुआदे ते सयूं अॼु थींदियूं। मुआदे ते सयूं थींदे ई आबना हुरमत सभिनी लाइ खुली वेंदो। सकून थियण बाद मुनासिब वक़्त ते एटमी मवाद जी बाक़ियात बि हासिल करे वठंदासीं। ईरानी फ़ौज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जे अॼु अमन मुआदे ते सयुनि वारी दावा रद्द करे छॾी। ईरानी पासदारनि इनकलाब फोर्स जो चवण हो त कंहिं बि मुआदे ते सयूं न करण बाबति आगाह करे चुका आहियूं। सदर ट्रम्प सही वारी तक़रीब पंहिंजी सालगिरह जे करे 14 जून ते करण चाहे थो। ट्रम्प इन मौके खे अलामती अहमियत ॾेई पंहिंजी ज़ाती मशहूरीअ जो प्रोग्राम बणाए रहियो आहे।

0: लाड़े वट हथियार बंदन बिन जणन के गोली हणी कतल कयो। मकतूलन जे 45 वरन जे लालू जोयो ए 55 सालन जे राजा जोयो तो सुजाणब लाश अस्पताल मुंतकिल। वारसन जो चवण आहे त जतोई बिरादरी जे हथियार बंदन नौजवान के कतल कयो आहे। अग बि संदस बिरादरी जे हिक अहलकार के कतल कयो वियो हो। सेवण में दरगाह हज़रत लाल शाहबाज कलंदर जो सीसीटीवी ऑपरेटर कराचीअ में फुर दौरान मज़ामत क़त्ल। कराची जे सोराब ॻोठ वारे इलाइक़े में हथियारबंदन नौजवान शाहिद सोलंगीअ खे फुर मज़ामत गोलियूं हणी क़त्ल कयो। इतलाउ ते घर में रोज़राड़ो मची वियो। वगण ऐं नओ देरो वेझो टे नींगर शाख ऐं दादू कैनाल में वेहंदे ॿुॾी विया। हिक खे बचायो वियो। वगण वेझो ॻोठ खरी जा रहवासी नींगर राबेल ऐं इश्फाक मुगेरी गठ शाख में वेहजंदे ॿुॾी विया। ॻोठाणनि 13 सालनि जे इश्फाक खे बचाए वरितो। 12 वरनि जे राबेल जो लाश हथ। नओ देरो वेझो बि 6 सालनि जो मासूम नींगर दादू कैनाल में ॿुॾी वियो। ॻोठ साबुल जोड़े जो में मासूम नींगर फरहान पुट एजाज शेख दादू कैनाल में ॿुॾी वियो। गोलाचारी पीर जो ॻोठ में शहरनि जो वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ थाणे आॾो धरणो नारेबाज़ी। शहरनि जो चवण हो त पीर जो ॻोठ ऐं भरपासे में बदमनी वधण सां माण्हू गैर महफ़ूज़ आहिनि। क़त्ल ऐं फुर जा वाकिया रोज़ जो मामूल बणजी विया आहिनि। हुकूमत अमुन बहाल कराए। सिंध में गर्मीअ मथां वरी बिजलीअ जी लोडशेडिंग अवाम लाइ अज़ाब करे छॾियो। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। हैदराबाद में मुस्लिम लीग खे पारां बिजली जी डिघी लोडशेडिंग ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मीरपुर माथिलो जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहवासियुनि जो बि बिजली बंदिश ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। सजावल जोड़े जो में बिजली जी मेन लाइन जो बंदिश ख़िलाफ़ शहरनि पारां बिजली जी डिघी लोडशेडिंग ख़िलाफ़ रैली कढी वई। ओडेरो लाल में बि बिजली जी डिघी लोडशेडिंग ऐं वापरा इंतिज़ामिया जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ शहरनि जो एहतजाज। शहरनि ऐं वापारियुनि बिजली जी अथरादो लोडशेडिंग ख़िलाफ़ स्टेशन रोड बंदि करे छॾियो। ऐं सिंध में पाणी जी शदीद खोट बरक़रार। आबादगार तबिको सख़्त परेशान। टिकराटो जे मुबारकपुर ऐं बंबली माइनर में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगार ऐं हारनि एहतजाज कयो। सन में बि माजद तालुके जे छछर पंपिंग स्टेशन जी बंदिश ख़िलाफ़ आबादगारनि ऐं हारनि जो एहतजाज। अॻवाण जो चवण हो त पाणी जी खोट सां पोखियल फसल सली रहिया आहिनि। पाणी जी खोट ख़तम करे आबादगारनि खे परेशानी खां बचायो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: किया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे हकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जो
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

और उन्हें अब 87 रन की और जरूरत घटा सकेगी। रन शो बोल्ड हुए, शरीफुल इस्लाम की गेंद पे कोई रन नहीं बना सके। एलेक्स कैरी कॉट सरकार बोल्ड स्क्रीन 8 रन बनाए 16 गेंदों पे। लेविस शेन ने 29 रन बनाए 45 गेंदों पर, एक चौका लगाया, उनका कैच किया नूरुल हसन ने शरीफुल इस्लाम की गेंद पे। कैमरन ग्रीन इस वक्त नॉट आउट में 20 रन पे 26 गेंद खेलकर एक चौका एक चक्का लगाया है। एक्स्ट्रा हैं इस वक्त 5 आने वाले खिलाड़ियों में, पीक हैं, बार्कलेट हैं, बेन डॉर्मिश हैं, एडम जाम्पा हैं और मेरेडिथ हैं। जहां तक अब तक बंगाली बॉलर्स का ताल्लुक है, तस्कीन अहमद 6 ओवर 33 रन 1 विकेट, मुस्तफिजुर 5 ओवर 41 रन कोई विकेट नहीं, महंगे रहे हैं। शरीफुल इस्लाम 6 ओवर 35 रन और तीनों विकेट पहली उन्होंने आखिरी दी। हसन 6 ओवर 1 मिनट 23 रन, जबकि ट्रेवर हेड ने 6.2 ओवर अब तक किए 34 रन कोई विकेट नहीं, और मुसद्दिक हुसैन ने 3 ओवर में अब तक 18 रन दिए हैं और उनको भी विकेट नहीं मिली है। ये है सुडल बांग्लादेश वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, जो करंटली मुकाबला जारी है मीरपुर ढाका में। उसके अलावा जनाब जो मुकाबला जारी है इस वक्त वुमेन का, नेदरलैंड वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन, बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे वो मुकाबला है और ये मुकाबला खेला जा रहा है बर्मिंगम में। और 139 रन बनाए नेदरलैंड की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर। बांग्लादेश ने 14 ओवरों में 4 विकेट पे 101 रन बना रखे हैं। 39 रन चाहिए, 36 गेंदें बाकी हैं और इनके पास 6 विकेट बाकी हैं। स्कोर कार्ड में अभी आपके साथ शेयर करता हूं जनाब इस वर्ल्ड कप वुमेन इम्पोर्टेंट गेम की। बांग्लादेश की खवातीन ने पहले बैटिंग की, जिसमें पीटर साइजर ने, इनफैक्ट नेदरलैंड की वुमेन ने पहले बैटिंग की, आई बेग योर पार्डन, साइजर ने स्कोर किए 16 रन 13 गेंदों पर 2 चौके। उसके अलावा मोल किनबर ने 11 रन स्कोर किए 7 गेंदों पर 2 चौके। बेबेटी डी ने 50 रन की इनिंग्स खेली 45 गेंदों पर 5 चौके लगाए और बेबेटी डी टीम की कैप्टन भी है और ये रन आउट हुई। उसके अलावा केल्स ने 4 रन स्कोर किए 5 गेंदों पर। रॉबिन रिजिक ने 13 रन स्कोर किए 14 गेंदों पर, एक चौका लगाया। इसके अलावा खोराना ने 1 रन बनाया 4 गेंदों पर। ओवर डिच ने 9 रन बनाए 9 गेंदों पर। आरिश जवेलिंग ने 13 रन स्कोर किए 11 गेंदों पर और वो नॉट आउट रही। कैरोलाइन डीलेंगे ने 1 रन स्कोर किया 4 गेंदों पर, जबकि सिल्वर ने 10 रन स्कोर किया 8 गेंदों पर, एक चौका लगाया, वो नॉट आउट रही और एक्स्ट्राज रहे थे 11। इस तरह 8 विकेट के नुकसान पर 139 रन स्कोर किए 20 ओवर्स में यहां पर नेदरलैंड की औरतों की टीम ने। पहली विकेट गिरी थी चाबा पर, दूसरी विकेट गिरी 36 पे, तीसरी विकेट 47 पे, चौथी 71, पांचवी 76, छठी विकेट 113, उसके बाद सातवीं विकेट जो है वो 115 और आठवीं विकेट 116 पे गिरी थी। बांग्लादेश के लिए फरीहा ने 4 ओवर किए 32 रन 1 विकेट। मारूफा अख्तर ने 4 ओवर किए 31 रन 2 विकेट ली। अख्तर मेंगला ने 4 ओवर किए 39 रन लेकर एक खिलाड़ी आउट किया। राबिया खान ने 4 ओवर 26 रन 1 विकेट और मोनी ने 4 ओवर में 17 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया। जवाब में बांग्लादेश की बैटिंग अभी जैसा कि मैंने बताया जारी है। उनके लिए जवेरिया फिरदौस ने 50 रन की इनिंग्स खेली 33 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के लगाकर। जिलारा एक्टर ने 26 रन स्कोर किए 23 गेंदों पर, एक चौका लगाया। सुल्ताना कोई रन बना सकी टीम की कैप्टन, उन्होंने एक ही गेंद का सामना किया। सोबाना मास्टरी ने 4 रन स्कोर किए 10 गेंदों पर, वो रन आउट हुई हैं। शर्मिन इस वक्त 13 रन पे नॉट आउट हैं और शौराना इस वक्त 6 रन पे नॉट आउट हैं। एक्स्ट्रा हैं 3 और 4 विकेट पे स्कोर है 102 14.1 ओवर का खेल हुआ। पहली विकेट 67, दूसरी 67, उसके अलावा तीसरी विकेट 79 और चौथी विकेट 85 पे गिरी है बांग्लादेश की खवातीन की टीम की। ज्वेलिंग ने 2 ओवर किए हैं 13 रन दिए हैं, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया है। हितार ने 3 ओवर किए 16 रन दिए कोई विकेट नहीं। रुबीना ने 1 ओवर में 9 रन दिए हैं। सिल्वर ने 2 ओवर में 18 रन देकर एक खिलाड़ी को
आउट किया है। इसके अलावा वेंडर वॉन्ग ने 2 ओवर में 20 रन दिए। कैरोलाइना डिलांगे सबसे कामयाब बॉलर हैं अब तक की, 3 ओवर 21 रन और 2 खिलाड़ी उन्होंने आउट कर रखे हैं, जबकि 1.4 ओवरों में 6 रन देकर कोई विकेट नहीं मिली है ओवर डिजिट को। तो ये है चोर जाल और अभी भी बांग्लादेश की टीम को 32 गेंदों में 35 रन की जरूरत है इस ऑल इम्पोर्टेंट वुमेन वर्ल्ड कप के मुकाबले। तो क्रिकेट का खेल न सिर्फ अब मर्दों में बहुत मकबूल है बल्कि खवातीन में भी जबरदस्त अंदाज में इसे फॉलो किया जाता है और वो खवातीन का T20 और वनडे दोनों वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अंडर द बैनर ऑफ ICC और जबरदस्त अंदाज में इन्हें सेलिब्रेट भी किया जाता है। जो चौथा मुकाबला था वर्ल्ड कप का जो कल रात खेला गया था साउथ हैम्पटन में, वहां न्यूजीलैंड की टीम ने 162 रन बनाए थे 6 विकेट पे, वेस्ट इंडीज की टीम ने 3 विकेट पे 163 रन बनाकर टारगेट अपने नाम करके मैच अपने नाम कर लिया था। और आज जो दूसरा मुकाबला है इसके बाद जो मुकाबला होगा जो इस वक्त बांग्लादेश और नेदरलैंड का मुकाबला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, प्रोग्राम के अगले से हम उसका जिक्र करेंगे। यहां थोड़ा न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के हवाले से बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने जब 162 रन बनाए तो उसमें गेज ने 39 रन बनाए थे 29 गेंदों पर 8 चौके लगाए, वो अच्छे क्रिकेटर हैं। फिलीमर ने 8 रन बनाए थे 11 गेंदों पे। टीम की कैप्टन जो है मेलिकर, उन्होंने 5 रन स्कोर किए 6 गेंदों पर। सोफिया डिवाइन 22 रन बनाए थे 15 गेंदों पर, 3 चौके लगाए थे। 40 रन स्कोर किए थे हॉलीडे ने 32 गेंदों पर, 5 चौके लगाए। मैडी ग्रीन ने 35 रन बनाए 22 गेंदों पर, 4 चौके और 1 छक्का। शार्प ने 5 रन बनाए 4 गेंदों पर, 2 रन बनाए थे। जेस्टर ने 2 ही गेंदे के लिए 6 विकेट पे 162 रन न्यूजीलैंड ने स्कोर किए थे। वेस्ट इंडीज के लिए 9 रन देकर 1 ओवर किया था जायदा ने, उसके अलावा हेक्टर ने 1 ओवर में 9 रन दिए थे। 4 ओवर किए थे मैथ्यूज ने 31 रन देकर, 1 खिलाड़ी आउट किया। डॉटिन ने 2 ओवर किए 22 रन से 1 विकेट। आलिया अलाइन ने 4 ओवर किए 27 रन 4 विकेट, पिकअप द बॉलर रही। एफी फ्लेचर 4 ओवर 26 रन कोई विकेट नहीं। उसके अलावा रामहर्क ने 3 ओवर में 25 रन दिए और जोसेफ ने 1 ओवर में 13 रन दिए। जहां तक बैटिंग का ताल्लुक है वेस्ट इंडीज के लिए काइना जोसेफ रन आउट हुई 2 रन बनाकर 4 गेंदों पर। हेली मैथ्यूज जो कि टीम की कैप्टन है नॉट आउट किए 7 चौके और 3 छक्के लगाए। डरिंद्र डॉटिन ने 6 रन स्कोर किया 8 गेंदों पर, और जबकि जजारा कैरेक्सटन नॉट आउट रही 6 रन बनाकर 8 गेंदों पर, जबकि 11 एक्स्ट्रा सेवर्स वेस्ट इंडीज ने 3 विकेट पे 163 रन बनाकर 19.5 ओवरों में मैच अपने नाम कर लिया। पहली विकेट 12, दूसरी 86 और तीसरी विकेट 126 पे गिरी थी। न्यूजीलैंड के लिए मायर ने 4 ओवर में 27 रन दिए कोई विकेट नहीं। ब्रीलिंग ने 2 ओवर किए 21 रन दिए उनको कोई विकेट न मिली। जैसेकर ने 4 ओवर 17 रन और 2 विकेटें। नैन्सी पटेल ने 2 ओवर किए 22 रन और कोई विकेट उनको न मिल सकी। मेलिकर 4 ओवर 41 रन दे गई उनको भी कोई विकेट न मिली। और सूफिया डिवाइन ने 3.5 ओवर किए 27 रन दे गई और उनको भी कोई विकेट जो है वो हासिल नहीं हो सकी। तो ये था जो चौथा मुकाबला था वुमेन वर्ल्ड कप के सिलसिले में जो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान खेला गया उसका हाल। बांग्लादेश की टीम अभी भी अपने टारगेट के ताकुब में है और बांग्लादेश की टीम ने 4 विकेट पे 112 रन बना लिए हैं, 26 गेंदों पर 28 रन बनाए चाहिए बर्मिंगम के मुकाम पर बांग्लादेश वुमेन को नेदरलैंड वुमेन के खिलाफ, और अभी उसके पास 6 विकेट बाकी हैं। अभी एक रन और बना है 113 बिफोर दिस मैच इज लाइव, जबकि 6:30 बजे पाकिस्तान वर्सेज इंडिया एक बहुत बड़ा वुमेन वर्ल्ड कप का टाकरा शुरू होने वाला है। उस पर बात करेंगे कि दोनों टीमों की स्ट्रेंथ इस वक्त क्या है और क्या सूरत हाल है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में इस वक्त हम आ गए हैं प्रोग्राम के पहले ब्रेक की जाने, आइए यहां पर ले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक से जब लौटेंगे वो विल टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच। लेट्स टेक अ ब्रेक।

0: तत्काल ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
1: सीड़पकारी बिन लाइ बेहतरीन मौके बनाए तो फौरी रजिस्ट्री
0: कॉन्टेक्ट
1: 03009317252
0: एंड 03132757860 हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
1: तमाचे महफूज मुस्तकबिल बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो बेहतरीन इंतखाब
0: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास चेहरे के दाग धब्बे खेल महासे और बेजान पन अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जिल्द को दे नया निखार नरमी ताजगी और कुदरती चमक सावली रंगत अब नहीं सिर्फ 3 दिन में पाए साफ निखरी और गोरी रंगत लेकिन याद रखें बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 03378963433 एंड 03154501092 बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो
2: अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अहां मुस्तकबिल जे जदीद डिजिटल महारतन सा पंहिंजे कैरियर के मजबूत बणण चाहियो था त पोइ तव्हां लाइ खुशख़बरी आहे ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर में नैफटेक ऐं प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम स्किल्स ऑफ टुमारो प्रोग्राम तहत मुकमल तौर ते मुफ़्त दाख़िलाऊं जारी आहिनि 3 महीननि जे मुख़्तसिर ऐं काराइते कोर्सेज में शामिल आहिनि AI फॉर एवरीवन फ्री लॉन्चिंग ज़रिए ऑनलाइन कमाई ग्राफिक डिज़ाइन ऐं वीडियो एडिटिंग डिजिटल मार्केटिंग जेकॾहिं तव्हां इंटरमीडिएट पास आहियो ही सुनहरी मौको तवाज है रजिस्ट्रेशन लाइ पेंजे CNIC इंटरमीडिएट जा सर्टिफिकेट ऐं पासपोर्ट साइज तस्वीरूं तैयार रखो ऐं अॼु ई दरख़्वास्त ॾियो ऑनलाइन अप्लाई करण लाइ विज़िट करियो nsis.navdtc.gov.pk या राब्तो करियो 03003113830 ऐं 03013865090 एड्रेस लाल टावर फर्स्ट फ्लोर सो फीट रोड IBA यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 जे भरसा सखर याद रखो रजिस्ट्रेशन जी आखिरी तारीख 16 जून 2026 आहे सीटू महदूद आहिनि तंहिं करे देर न करियो ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर तव्हां जे रोशन मुस्तक़बिल ॾांहुं पहिरियों कदम
3: यार मां छा कयां किथे वञा घर में वेठो आहियां पर ठीक ई न आहियां शायद मुझे जिंदगी लाइ का दवाई नाहे ठही
4: छो भला छा थियो आहे तोखे साफ़ साफ़ ॿुधा मसलो छा आहे
3: यार एक मसलो हुजे त बुधाया मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे न भुख सही लगे थी ऐं जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पेर सुन थी वञन था ऐं सजो ॾींहुं सुस्ती महसूस थे थी कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां
4: यार तुझा घणा न बस एक ही मसलो आ
3: एक इहो कीअं
4: हा तुझो मैदो ख़राब आ छा तो न ॿुधो आ मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी
3: त पोइ मां छा कयां
4: सोलो हल आहे इस्तेमाल कर शिफ़ाए मैदा कोर्स हे कुदरती जुज़नि मां तयार कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुल ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो बुख खुली वेंदई खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई पेट पोखजण ख़तम सुस्ती ख़तम जिस्म में ताक़त ईंदई
3: वाह यार वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
4: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं अल नूर दवाखाना रोड़ी ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 03055800616 शिफ़ाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त
5: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक NICVD रोड सखर हैदराबाद ऐं लाड़काणे जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: खां वक़्त खां अॻु चूंड शेड्यूल वापसि करण जो मुतालबो करे चुका आहियूं। इल्तवाह शिकायतनि जे अज़ाले लाइ ट्रुथ एंड रिकनसिलिएशन कमीशन क़ाइम करण जी कोशिश कंदासीं। वफ़ाक़ी हुकूमत जो बजट 2026-27 में ज़रखेज़ स्कीम तहत 750,000 नंढनि आबादगारनि खे 300 अरब रूपियनि जा बिना व्याज कर्ज़ फराहम करण जो ऐलान। बजट दस्तावेज़ मूजिब ज़री मशीनरी लाइ 5 अरब रूपिया सब्सिडी लाइ मुख़्तस। 12 एकड़ खां घटि ज़मीन मालिकनि खे 1500 रूपिया फ़ी एकड़ सब्सिडी फराहम कई वेंदी। भाण जा अघु घटि रखण लाइ भाण कंपनियुनि खे 20 अरब रूपियनि जो पैकेज ॾिनो वेंदो। मौसमियाती तब्दीलीअ खे मुंहुं ॾियण ज़री शोबे खे नुक़सान खां बचाइण लाइ आलमी बैंक जी मदद सां 20 करोड़ डॉलर मुख़्तस कया विया। क़ौमी असेंबली में नए माली साल जे बजट ते बहस। अपोज़िशन मेंबर्स पारां मुल्क अंदरि वधंदड़ महांगाई ते ज़ाब्तो आणण जो मुतालबो। MNA शाहिद खटक जो चवण हो त मुल्क में घाटे टोड़ महांगाई आहे। तेल जा अघ तारीख़ जे बुलंद तरीन सतह ते मौजूद आहिनि। विचोले तबिके जे इस्तेमाल जूं शयूं बि महांगियूं थी वियूं आहिनि। घटि आमदनी वारा परेशान आहिनि। उस्मान बादैनी चयो त बलोचिस्तान में मौजूद मैदनियात सां पाकिस्तान जो कर्ज़ ख़त्म थी सघे थो। गवादर पोर्ट ते 25 साल खां हले पियो। उतां जे माण्हुनि खे पीअण जो साफ़ पाणी बि नथो मिले। सुत समा वारे फाकी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त समूरी दुनिया क़बूल कयो त पाकिस्तान अमुन लाइ किरदार अदा कयो। अॼु क़ौमी झंडे जी इज़त आहे। मैशत बि दुरुस्त जिते मुल्क जी इज़त जी ॻाल्हि हुजे त उते पंहिंजी ज़ात जी इज़त महसूस करणु घुर्जे। वफ़ाकी वज़ीर क़ौमी असेंबली में बजट इजलास खे ख़िताब कंदे वधीक चयो त बजट ते तनक़ीद ऐं एहतजाज अपोज़िशन जो हक़ आहे, पर हाकारी क़दमनि जी वाखाण बि थियणु घुर्जे। समूरनि शोबनि सां मुशावरत बाद बजट तयार कई वई।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा मियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: लई। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: उनके कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है, ये तो देखो। एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिए आप?
4: एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ से गिफ्ट।

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती जहन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: तुम एक खोखली औरत हो, मर्दों से दिल लगी करने वाली।
0: अगर मेरे बेटे को ये ना मिले ना तो मैं पागल हो जाएगा।
1: मेरी मोहब्बत के काबिल है वो।

0: किया है सिंधी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू सुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम कहां के सच्चे थे, दर्द पी के मरते थे, जहर पी के जीते थे, जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे। हम कहां के सच्चे थे।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: या है सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे की करो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान ए अमेरिका जंग की खात्मे लाए मुआदे ते सयूं अज थींदियूं या न अमेरिका ए ईरान जे बयानन सा सूरत हाल वाज़े न थी सघी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवणु आहे त ईरान सां अमन मुआदे ते सयूं अज थींदियूं। मुआदे ते सयूं थींदे ही आबनाए हुरमत सभिनी लाइ खुली वेंदो। सकून थियण बाद मुनासिब वक़्त ते एटमी मवाद जी बाक़ियात बि हासिल करे वठंदासीं। ईरानी फ़ौज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी अॼु अमन मुआदे ते सयुनि वारी दावा रद्द करे छॾी। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स जो चवणु आहे त कंहिं बि मुआदे ते सयूं न करण बाबति आगाह करे चुका आहियूं। सदर डोनाल्ड ट्रंप सही वारी तकरीब पंहिंजी सालगिरह जे करे 14 जून ते करणु चाहे थो। ट्रंप उन मौके खे अलामती अहमियत ॾेई पंहिंजी ज़ाती मशहूरीअ जो प्रोग्राम बणाए रहियो आहे। रतो देरो वेझो हथियारबंदनि जी मोटरसाइकिल सवारनि ते फायरिंग, ॿ ॼणा मारिजी विया। ॻोठ मीर मोहम्मद जलबाणी लाड़े वटि हथियारबंदनि ॿिनि ॼणनि खे गोलियूं हणी क़तल कयो। मक़तूलनि जी 45 वरनि जे लालू जोयो ऐं 55 वरनि जे राजा जोयो तौरु सुञाणप। लाश अस्पताल मुंतकिल। वारसनि जो चवणु आहे त जतोई बिरादरी जे हथियारबंदनि नौजवाननि खे क़तल कयो आहे। रोहड़ीअ में दरगाह सदरुद्दीन शाह वेझो हथाए लाश जी रियाज़ चौहान तौरु सुञाणप। नौजवान जो लाश फिटो करण वारे वाक़े जा CCTV फोटेजिस मंज़रियाम ते अची विया। फोटेजिस में अणॼातल शख़्स खे नौजवान जो लाश सवारीअ मां लाहिण बाद गेहलींदे ॾिसी सघिजे थो। पुलिस मूजिब नौजवान सखर जे इलाइक़े थर्मल मिल रोड जो रहवासी आहे। वारसनि पारां नौजवान जो लाश थर्मल मिल रोड ते रखी धरणो, जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। वगण ऐं नौदेरो वेझो टे नींगर शाख ऐं कैनाल में वेंझंदे ॿुॾी विया, हिक खे बचायो वियो। वगण वेझो ॻोठ खरी जा रहवासी नींगर राबेल ऐं इशफाक मुगेरी शाख में वेंझंदे ॿुॾी विया। ॻोठाणनि 13 वरनि जे इशफाक खे बचाए वरितो। राबेल जो लाश हथ। नौदेरो भरिसां 6 वरनि जे मासूम नींगर दादू कैनाल में ॿुॾी वियो। ॻोठ साबुर जेड़जो में मासूम नींगर फरहान शेख दादू कैनाल में ॿुॾी वियो। लाश हथ। घर में को रामतल।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मारू डुंगर राधा
2: आवाज भी सिंह की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज
0: सिंध जो आवाज़ FM

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नई का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: दापत यार, मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो
2: लई। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: काश हमारे पास वैसी गाड़ी होती चमचमाती हुई।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: कहती हूँ अम्मी, मैं मनोज हूँ उनकी जिंदगी में, अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना दे ले।
2: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे।

देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: ही आहे सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: शहीद केतरा जख्मी पडेही मीडिया मूजिब बेरोत के डाखणे इलाके में इमारत ते हवाई हमले में बजना शहीद चार जख्मी थी पिया। जंगी जहाजन जा चार गाइडेड मिजाइलन सा बेरोत के डाखणी इलाके के निशानो बनायो। ईरानी पार्लियामानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ चयो आए तो बेरोत हमले जाहिर करे छो तो अमरीका जिम्मेवार पूरी करण जो इरादो नो रखे। सहीनवी हुकूमत के खुलियल छूट डेई अमरीका का भी रियायत हासिल करे नो सके।

0: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तव्हां ॿुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु, मां आहियां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सघंदा। एशिया जी सभ खां वॾी मंछुर डंड सुकी वई, अख़्तियारनि नोटिस न वरितो। MQM जे मुतालबे ते वफ़ाक पारां कराची ऐं हैदराबाद जे लाइ 25 अरब रुपियनि जो तरक़ियाती पैकेज ते इतफ़ाक़। NICVT जी मुफ़्त इलाज जे मॉडल खे मदीर ताईं वधायो वेंदो, वॾो वज़ीर सैद मुराद अली शाह। गाढ़नि चांवरनि जे देस लाड़ पट में सख़्त सो कहिड़ो, इंसानी हयातियूं ख़तरे में, फसल तबाह। हैदराबाद में समाजी तंज़ीम तरफ़ां ॿारनि खां मज़दूरी कराइण ख़िलाफ़ आलमी ॾिहाड़े जे हवाले सां सिरुनि जे भठे ते कम कंदड़ मज़दूरनि ऐं संदनि ॿारनि जे लाइ तक़रीब मुनक़िद। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, सिंध कहिड़नि मसलनि खे मुंहुं ॾेई रही आहे। एशिया जे सभ खां वॾे में वॾी मंछुर डंड सुकी वई, पाणी न हुजण सबब मंछुर डंड 2 किलोमीटर ताईं बंजर ज़मीन जहिड़ो ॾेख ॾियण लॻी आहे। गरकल रिपोर्टनि मूजिबि मंछुर डंड में पाणी घटिजण सबब मच्छीअ जो नसल बि ख़तम थी वियो आहे। मुहाणा बुख ऐं बदहाली वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर बणियल आहिनि। मंछुर डंड में पाणी घटिजण सबब पाणी सतह 104 RL यानी 4 थी वई। मंछुर तोड़े भरपासे जूं ज़मीनूं बि बंजर थियण लॻियूं आहिनि। आबादगार फाकाकशीअ में मुबतला थी विया। मंछुर जे 1,50,000 इंसानी आबादी पीअण तोड़े ज़रई पाणीअ खां महरूम थी वई आहे। पाणी माहिरनि जो चवणु आहे त एशिया जी वॾे में वॾी मंछुर डंड में पाणी न अचण सबब सूरत हाल गणती जोगी बणिजी वई आहे। पाणी जी शदीद खोट सबब डंड लॻभॻि 2 किलोमीटर ताईं सुकी वई आहे, जंहिं करे आबी जीवत मुहाणनि ऐं मक़ामी आबादीअ जे रोज़गार खे सख़्त ख़तरा वधी विया आहिनि। माहिरनि मूजिबि जेकॾहिं मंछुर डंड ॾांहुं पाणीअ जी फराहमी बहाल न कई वई त माहौलियाती तबाहीअ सां गॾु हज़ारे ख़ानदाननि जी मईशत बि मुतासिर थी सघे थी। मक़ामी माण्हुनि जो चवणु आहे त सिंध खे हथ सां बंजर बणायो वियो आहे। मंछुर डंड ॾिसूं सुकी वई आहे, हितां जे माण्हुनि खे कंगाल कयो वियो आहे। हथ सां मंछुर डंड खे सुकायो वियो आहे। हुकूमत खे फौरी कदम खणण ऐं डंड खे बचाइण जे लाइ पाणी जी फराहमी यकीनी बनाइण जो मुतालबो कयो वियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ MQM पाकिस्तान जे मुतालबे ते कराची ऐं हैदराबाद जे लाइ तरक़ियाती पैकेज जी मंज़ूरी ॾियण ते रज़ामंदी ज़ाहिर करे छॾी। MQM पाकिस्तान जे वफ़द वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कई, जंहिं में ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक ऐं जावेद हनीफ़ शामिल हुआ। मुलाक़ात दौरान वज़ीर आज़म सां गॾु इसहाक़दार, राणा सनाउल्ला, एहसन इक़बाल, आज़म नज़ीर तारड़ ऐं अताउल्ला तारड़ पिण मौजूद हुआ। ज़रियनि मूजिबि मुलाक़ात में बजट तजवीज़ुनि, बलदियाती हुकूमतुनि बाबति तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल ऐं सिंध में गवर्नर जे मामले ते बि ॻाल्हियूं थियूं। ज़रियनि जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म कराचीअ खां 20 अरब रुपियनि ऐं हैदराबाद जे लाइ 5 अरब रुपियनि जे तरक़ियाती पैकेज ते इतफ़ाक़ कयो आहे। ज़रियनि मूजिबि हुकूमत MQM जे तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल बाबति गॾिजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ सां ॻाल्हियुनि जी ख़ातिरी पिण कराई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ MQM जे तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल जी हिमायत करे थो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वेस्क्यूलर डिज़ीज़ ऐं हसन सुलेमान मेमोरियल हस्पताल मलीर जे विच में मुफ़ाहमती MOU ते सहियुनि जी तक़रीब जी सदारत कई, जंहिंजो मक़सदु मलीर ऐं आसपास जे इलाइक़नि जे रहाकुनि लाइ दिलि जे मर्ज़नि जी जामिया

तुंहिंजी फराहमी आहे। उन भाङेवारी तहत हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल दिल जी हंगामी मरीज़नि जी जांच मरीज़नि खे मुस्तहकम करण ऐं इलाज खां पोइ जी निगहदाश्तूं ख़िदमतूं फराहम कंदो, जड॒हिं त एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ऐं दिल जे ऑपरेशन जहिड़नि जदीद इलाज जी ज़रूरत वारनि मरीज़नि खे हिकु मख़सूस रेफरल निज़ाम ज़रिए NICVT मुंतक़िल कयो वेंदो। उन तावन में टेलीकार्डियोलॉजी सपोर्ट, माहिरनि जी मुशावरत ऐं तिबी नीम तिबी पैरामेडिकल अमले जी सलाहियतुनि में इज़ाफ़ो पिण शामिल आहे। सयन जी तक़रीब वज़ीर आला हाउस में मुनक़िद थी, जंहिं में सिहत वारे वज़ीर डॉक्टर अदरा फज़ल पेचूहो, वॾे वज़ीर जी सेक्रेटरी आसिफ़ जमील, सिहत सेक्रेटरी ताहिर सांगी, NICVT जे क़ाइम मक़ाम एसोसिएट एग्ज़ीक्यूटिव डॉक्टर असद बिलाल अवाण, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद, हायर एजुकेशन कमीशन HEC जे चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक रफ़ी ऐं ॿियनि सीनियरनि इख़्तियारनि शिरकत कई। सिज वॾे वज़ीर ख़िताब कंदे चयो त सिंधु हुकूमत मयारी तिबी सहूलियतुनि ताईं रसाईअ खे वसत ॾियण ऐं जान बचाईंदड़ दिल जे मरीज़ जे इलाज खे आवाम जे घरनि जे वेझो पहुचाइण जे लाइ पुरज़म आहे। हुन चयो त NICVT मुफ़्त ऐं आलमी मयार जी दिल जे इलाज जी फराहमी ज़रिए लखे माण्हुनि लाइ उमेद जी अलामत बणिजी चुको आहे। वॾे वज़ीर सिहत खाते ऐं NICVT इंतिज़ामिया खे हिदायत कई त मुआदे ते असराइती अमल दरामद खे यकीनी बणायो वञे ऐं अहिड़नि मरीज़नि खे मज़बूत रेफरल ऐं मुंतकिली जो निज़ाम तयारु कयो वञे जिन खे दिल जे जदीद इलाज जी ज़रूरत हुजे। सिंध जे सामूंडी पटीअ वारे पुछड़ीअ वारे ज़िले ठटे में पाणीअ जी शदीद खोट संगीन सूरत हाल इख़्तियार करे वई आहे, जंहिं सबब ज़रई ज़मीन फसल सख़्त मुतासिर थी रहिया आहिनि। ठटे ज़िले जे मुख़्तलिफ़ वाहन शाखुनि ऐं बिराजनि में पाणीअ जी फराहमी इंतिहाई घटिजी वञण करे सारियालो फसल सुकी ठोठ बणिजी वियो आहे, जॾहिं त केतिरनि ई वाहन ऐं शाखुनि में पाणीअ जी जाइ ते वारी उॾामण जा मंज़र ॾिसण में अची रहिया आहिनि। केतिरनि ई ॻोठनि में रहवासी पीअण जे पाणीअ जे लाइ मेलनि जा मुफ़ासिला तय करण ते मजबूर आहिनि, जंहिं सबब रोज़ानी ज़िंदगी बि सख़्त मुतासिर थी रही आहे। ॿिए तरफ़ आबादगार हारियुनि ऐं समाजी तनज़ीमुनि हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त कोटड़ी बिराज खां हेठाईं इलाइक़नि ताईं पाणीअ जे मुनसिफ़ाणे विछ खे यकीनी बणायो वञे, डाउन स्ट्रीम में पाणीअ जी फराहमी बहाल कई वञे ऐं मुतासिर इलाइक़नि खे हंगामी बुनियादनि ते रिलीफ फराहम कयो वञे त जीअं ज़रई तबाही ऐं इंसानी बुहरान खे रोके सघिजे। वफ़ाक़ी हुकूमत ईंदड़ माली साल जे बजट में वफ़ाक़ी मुलाज़मन, हथियारबंद फ़ौज ऐं पेंशनरनि लाइ रिलीफ पैकेज जो ऐलान करे छॾियो आहे। फाइनेंस बिल मूजिबि नए पी स्केल में 2022 जा 15% ऐं 2025 जा 10% एडाक रिलीफ बुनियादी पघार में ज़िम कया वेंदा। सभिनी वफ़ाक़ी सरकारी मुलाज़मनि खे हलंदड़ बुनियादी पघार रनिंग बेसिक पे ते 7% एडाक रिलीफ अलाउंस ॾिनो वेंदो, जॾहिं त ग्रेड 1 खां 22 ताईं जे मुलाज़मनि खे डिस्पेरिटी रेडिकेशन अलाउंस 2026 बुनियादी पघार जे 15% जे बराबरि मिलंदो। फाइनेंस बिल मूजिबि कन्वेंस अलाउंस में मौजूदा रक़म खां 50% वाध कई वेंदी। सिविल आर्म फोर्स लाइ कॉन्स्टेंट अटेंडेंट अलाउंस 7,000 मां वधाए 30,000 रुपया कयो वियो आहे, जॾहिं त काबीना डिवीज़न जे ऑफिसरनि ऐं अमले जी स्पेशल पे 6,000 मां वधाए 20,000 रुपया माहवार कई वई आहे। उन खां सवाइ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जे स्केल 1 खां 22 जे मुलाज़मनि जो स्पेशल अलाउंस 10% मां वधाए 50% कयो वियो आहे। स्पेशल कन्वेंस अलाउंस 6,000 मां वधाए 10,000 रुपया कयो वियो आहे, जॾहिं त सभिनी पेंशनर जे बेस लाइन पेंशन में 7% वाध कई वई आहे। ही समूरा रिलीफ उपाउ 1 जुलाई 2026 खां लागू थींदा। हैदराबाद में समाजी तनज़ीम तरफ़ां ॿारनि खां मज़दूरी कराइण ख़िलाफ़ आलमी ॾिहाड़े जे हवाले सां सिरुनि जे बठन ते कम कंदड़ मज़दूरनि ऐं संदन ॿारनि जे लाइ तक़रीब मुनक़िद कई वई। सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स स्पॉक पारां टंडो हैदर वेझो हिकु तक़रीब मुनक़िद कई वई। तक़रीब में सिरुनि जे बठन ते कम कंदड़ मज़दूरनि ऐं ॿारनि वॾे तादाद में शिरकत कई। तक़रीब में ॿारनि पारां चाइल्ड लेबर जे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ इस्लाही टेबलोज़, स्टेज ड्रामा, कलाम ऐं मुख़्तलिफ़ रांदियुनि में हिसो वरितो। तक़रीब में स्पार्क जे अॻवाननि काशिफ बजीर, वाजिद जागीरानी, शौकत सरेवाल, सहरुनिसा ऐं ॿियनि शिरकत कई। अॻवाण जो चवणु हुयो त सिरुनि जे बठन ते केतिरा ई ख़ानदान गुरबत ऐं कर्ज़नि में फासी विया आहिनि। स्पार्क मूजिबि ही मुआशी दबाउ जबरी ॿारनि जी मज़दूरीअ जो वॾो सबबु आहे, जिते ख़ानदान पंहिंजे ॿारनि खे बि ख़तरनाक कम में शामिल करण ते मजबूर थियनि था। अहिड़ी सूरतहाल ॿारनि खे तालीम ऐं बुनियादी हक़नि खां महरूम करे रही आहे ऐं मज़दूरनि में ज़हनी दबाउ ऐं मायूसी पैदा करे रही आहे। इन्हनि इस्लाही थिएटर ऐं टेबलो ज़रिए भठे मज़दूरनि खे संदन हक़नि, जबरी मज़दूरीअ जे ख़तरनि ऐं ॿारनि जे तालीम जी अहमियत बाबति आगाही ॾिनी।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध पाकिस्तान जो मुआशी ज़रई ऐं सामूंडी लिहाज़ खां इंतिहाई अहम सूबो आहे। 2026 में सिंध खे हिकु ई वक़्तु केतिरनि ई चैलेंजनि ऐं मौक़नि खे मोड़णो पियो आहे। पाणीअ जो बुहरान सभ खां वॾो मसइलो। सिंध हिन वक़्तु पाणीअ जे खोट जे संगीन सूरतहाल खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। आपाशी वाहन में पाणीअ जी घटताई सबबि ख़ासि तौर ते हेठां ई सिंध जे आबाद घरनि में ॻणती वधी वई आहे। ज़रई पैदावार ख़ासि करे चांवर, कमंद ऐं ॿिनि फसलनि ते मनफ़ी असर जा ख़दशा ज़ाहिर कया पिया वञनि। ताज़नि रिपोर्टुनि मूजिब पाणीअ जी खोट सिंध ऐं बलोचिस्तान जे केतिरनि ई इलाइक़नि में मुआशी ऐं समाजी मसला वधाए रही आहे। मईशत ऐं वापार। सिंध पाकिस्तान जे मुआशी मर्कज़ तौरु अञा बि अहम हैसियत रखे थो, जिते कराची मुल्क जो सभ खां वॾो सनती ऐं वापारी शहर आहे। पाकिस्तान जी मईशत में 2025-2026 दौरान वाधि जो रुझान ॾिठो वियो आहे, जंहिं जा मुस्बत असर सिंध जे सनत ऐं ख़िदमतुनि वारे शोबे ते बि पिया आहिनि। ज़रई ऐं सनती सरगर्मियुनि में बहितरीअ जा इशारा मिलिया आहिनि, जेतोणीक पाणीअ जी खोट हिकु वॾो ख़तरो बरक़रार आहे। मौसमियाती तब्दीली ऐं गर्मी। सिंध ख़ासि तौर ते सख़्त गर्मीअ जे लहर खां मुतासिर थी रहियो आहे। कराची ऐं ॿियनि ॾाखणनि इलाइक़नि में 44 डिग्री सेंटीग्रेड खां वधीक गर्मी रिकॉर्ड कई वई आहे। माहिरनि मूजिबि मौसमियाती तब्दीलीअ सबबि गर्मीअ जूं लहरूं वधीक शदीद ऐं बार बार थियण लॻियूं आहिनि, जंहिं सां सिहत, पाणी ऐं बिजली जी फराहमीअ ते दॿाउ वधी रहियो आहे। सिहत जे शोबे में कुझु बहितरीअ जा इशारा मौजूद आहिनि। ख़ासि तौर ते गुंजाइश ऐं बजट में वाध जे हवाले सां बहरहाल साफ़ पाणीअ जे खोट, गर्मी ऐं माहौलियाती मसइलनि जे मयार बाबति ख़दशा मौजूद आहिनि। तालीम जे शोबे में स्कूलनि जी सहूलियतुनि, उस्तादनि जी खोट ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर जा मसइला अञा बि मौजूद आहिनि। शहरी इलाइक़नि में ॻोठाणनि इलाइक़नि जे विच में तालीमी सहूलियतुनि जो फ़र्क़ु नुमाया आहे। माहिरनि तालीम जे मयार ऐं स्कूलनि में हाज़िरी वधाइण ते ज़ोर ॾिनो आहे। ज़रात। सिंध पाकिस्तान जे ज़रई पैदावार में अहम हिसो रखे थो। चांवर, कणक, कमंद ऐं कपह सिंध जूं अहम फसल आहिनि। ज़रात में वाध जा इम्कान मौजूद आहिनि, पर पाणीअ जी खोट ऐं मौसमियाती तब्दीली मुस्तक़बिल लाइ वॾा ख़तरा समुझा वञनि था। सिंध जी मौजूदा सूरतहाल में टे वॾा मसला नुमाया आहिनि। पाणी जी खोट ऐं दरियाई वसीलनि बाबति ख़दशा, मौसमियाती तब्दीली ऐं सख़्त गर्मी, तालीम ऐं सिहत जी सहूलियतुनि जी ज़रूरत। साॻिए वक़्तु कराची जे वापारी सरगर्मियुनि, ज़रई इस्लाहातुनि ऐं सनअती बुनियादनि सबबि सिंध वटि तरक़ीअ जा मनसूबा ऐं मौक़िया पिणु मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं पाणी, तालीम, सिहत ऐं माहौलियाती मसइलनि ते मौसर पॉलिसियूं इख़्तियार कयूं वञनि त सिंध मुल्क जी तरक़ीअ में वधीक अहम किरदार अदा करे सघे थी।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा पी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।

किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: थिया है सिंध जी दिल
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त हियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: या है सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे हकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध पाकिस्तान जो मुआशी ज़रई ऐं सामूंडी लिहाज खां इंतिहाई अहम सूबो आहे। 2026 में सिंध खे हिक ई वक़्त केतिरनि ई चैलेंजनि ऐं मौक़नि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे। पाणीअ जो बुहरान सभ खां वॾो मसलो। सिंध हिन वक़्तु पाणीअ जे खोड़ जे संगीन सूरतहाल खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। आपाशी वाहन में पाणीअ जी घटिताई सबबि ख़ासि तौर ते हेठां ई सिंध जे आबाद घरनि में ॻणती वधी वई आहे। ज़रई पैदावार ख़ासि करे चांवर, कमंद ऐं ॿिनि फसलनि ते मनफ़ी असर जा ख़दशा ज़ाहिर कया पिया वञनि। ताज़नि रिपोर्टुनि मूजिबि पाणीअ जी खोट सिंध ऐं बलोचिस्तान जे केतिरनि ई इलाइक़नि में मुआशी ऐं समाजी मसला वधाए रही आहे। मईशत ऐं वापार। सिंध पाकिस्तान जे मुआशी मर्कज़ तौरु अञा बि अहम हैसियत रखे थो, जिते कराची मुल्क जो सभ खां वॾो सनती ऐं वापारी शहर आहे। पाकिस्तान जी मईशत में 2025-2026 दौरान वाधि जो रुझान ॾिठो वियो आहे, जंहिं जा मुस्बत असर सिंध जे सनत ऐं ख़िदमतुनि वारे शोबे ते बि पिया आहिनि। ज़रई ऐं सनती सरगर्मियुनि में बहितरीअ जा इशारा मिलिया आहिनि, जेतोणीकि पाणीअ जी खोट हिकु वॾो ख़तरो बरक़रार आहे। मौसमियाती तब्दीली ऐं गर्मी। सिंध ख़ासि तौर ते सख़्त गर्मीअ जे लहर खां मुतासिर थी रहियो आहे। कराची ऐं ॿियनि ॾाखणनि इलाइक़नि में 44 डिग्री सेंटीग्रेड खां वधीक गर्मी रिकॉर्ड कई वई आहे। माहिरनि मूजिबि मौसमियाती तब्दीलीअ सबब गर्मीअ जूं लहरूं वधीक शदीद ऐं बार बार थियण लॻियूं आहिनि, जंहिं सां सिहत, पाणी ऐं बिजली जी फराहमीअ ते दॿाउ वधी रहियो आहे। सिहत जे शोबे में कुझु बहितरीअ जा इशारा मौजूदु आहिनि। ख़ासि तौर ते वॾनि इस्पतालुनि जी गुंजाइश ऐं बजट में वाधि जे हवाले सां बहरहाल साफ़ पाणीअ जे खोट, गर्मी ऐं माहौलियाती मसलनि सबबि केतिरनि ई इलाइक़नि में सिहत जा चैलेंज बरक़रार आहिनि। कुझु रिपोर्टनि मुताबिक़ सिंध जे केतिरनि इलाइक़नि में पाणी जे मयार बाबति ख़दशा मौजूदु आहिनि। तालीम जे शोबे में स्कूलनि जी सहूलियतुनि, उस्तादनि जी खोट ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर जा मसला अञा बि मौजूदु आहिनि। शहरी इलाइक़नि में ॻोठाणनि इलाइक़नि जे विच में तालीमी सहूलियतुनि जो फ़र्क़ु नुमाया आहे। माहिरनि तालीम जे मयार ऐं स्कूलनि में हाज़िरी वधाइण ते ज़ोर ॾिनो आहे।

सिंध पाकिस्तान जे ज़रई पैदावार में अहम हिसो रखे थो। चांवर, कणक, कमंद ऐं कपह सिंध जूं अहम फसल आहिनि। ज़रात में वाद जा इम्कान मौजूद आहिनि, पर पाणीअ जी खोट ऐं मौसमियाती तब्दीली मुस्तक़बिल लाइ वॾा ख़तरा समुझा वञनि था। सिंध जी मौजूदा सूरत हाल में टे वॾा मसला नुमाया आहिनि। पाणी जी खोट ऐं दरियाई वसीलनि बाबति ख़दशा, मौसमियाती तब्दीली ऐं सख़्त गर्मी, तालीम ऐं सिहत जे शोबे में बुनियादी सहूलियतुनि जी ज़रूरत। साॻे वक़्तु कराची जे वापारी सरगर्मियुनि, ज़रई इस्लाहातुनि ऐं सनअती बुनियादनि सबबि सिंध वटि तरक़ीअ जा मनसूबा ऐं मौकिया पिणु मौजूद आहिनि। जेकॾहिं पाणी, तालीम, सिहत ऐं माहौलियाती मसइलनि ते मौसर पॉलिसियूं इख़्तियार कयूं वञनि त सिंध मुल्क जी तरक़ीअ में वधीक अहम किरदार अदा करे सघे थी।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: 1.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां गुलाब खान बेण।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा एशिया जी सब खां वडी मंशूर डंड सुकी वई अख्तियार नोटिस न वरतो एमक्यूएम जे मुतालबे ते वफाक पारा कराची ऐं हैदराबाद जे लाइ 25 अरब रुपए जो तरक्याती पैकेज ते इतफाक एनआईसीवीटी जी मुफ्त इलाज जे मॉडल के मदीर ताईं वधायो वेंदो वॾो वज़ीर सैद मुराद अली शाह गाढ़न चांवरन जे देस लाड़ पट में सख्त सो कहड़ो इंसानी हयातियूं खतरे में फसल तबाह हैदराबाद में समाजी तंजीम तरफा बारन का मजदूरी कराने खिलाफ आलमी दिहाड़े के हवाले से सुरुन के भट्टे ते कम कंदड़ मजदूरन संदन बारन के लिए तकरीब मुनक़िद स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सकंदा सिंध केड़न मसलन के मुंह दे रही आए एशिया के सब खां वडे में वडी मंशूर डंड सुकी वही पानी न हुजण सबब मंशूर डंड 2 किलोमीटर ताई बंजर जमीन जड़ो डेख जण लगी आए गरिकल रिपोर्ट मूजिब मंशूर डंड में पानी घटजण सबब मच्छी जो नस्ल भी खत्म थी वियो आए मुहाना भुख ऐं बदहाली वारी जिंदगी गुजारण ते मजबूर बणियल आहिनि मंशूर डंड में पानी घटजण सबब पाणी सतह 104 RL यानी 4 थी वई मंशूर तोड़े भरपासे जूं ज़मीनूं बि बंजर थियण लगियूं आहिनि आबादगार फाकाकशीअ में मुबतला थी विया मंशूर जे 1,50,000 इंसानी आबादी पीअण तोड़े ज़रई पाणीअ खां महरूम थी वई आहे पाणी माहिरनि जो चवणु आहे त एशिया जे वॾे में वॾी मंशूर डंड में पाणी न अचण सबबि सूरत हाल घंटे जोगी बणिजी वई आहे पाणी जी शदीद खोट सबबि डंड लॻभॻि 2 किलोमीटर ताईं सुकी वई आहे जंहिं करे आबी जीवत मुहाणनि ऐं मक़ामी आबादीअ जे रोज़गार खे सख़्त ख़तरा वधी विया आहिनि माहिरनि मूजिब जेकॾहिं मंशूर डंड ॾांहुं पाणीअ जी फरहमी बहाल न कई वई त माहौलियाती तबाहीअ सां गॾु हज़ारे ख़ानदाननि जी मईशत बि मुतासिर थी सघे थी मक़ामी माण्हू जो चवणु आहे त सिंध खे हथ सां बंजर बणायो वियो आहे मंशूर डंड ॾिसूं सुकी वई आहे हितां जे माण्हुनि खे कंगाल कयो वियो आहे हथ सां मंशूर डंड खे सुकायो वियो आहे हुकूमत खे फौरी क़दम खणण ऐं डंड खे बचाइण जे लाइ पाणी जी फरहमी यकीनी बनाइण जो मुतालबो कयो वियो आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ MQM पाकिस्तान जे मुतालबे ते कराची ऐं हैदराबाद जे लाइ तरक़ियाती पैकेज जी मंज़ूरी ॾियण ते रज़ामंदी ज़ाहिर करे छॾी MQM पाकिस्तान जे वफ़द वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कई जंहिं में ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी फारूक सत्तार मुस्तफ़ा कमाल अमीनुल हक ऐं जावेद हनीफ़ शामिल हुआ मुलाक़ात दौरान वज़ीर आज़म सां गॾु इसाक़दार राणा सनाउल्ला एहसन इक़बाल आज़म नज़ीर तारड़ ऐं अताउल्ला तारड़ पिण मौजूदु हुआ ज़रियनि मूजिब मुलाक़ात में बजट तजवीज़ुनि बलदियाती हुकूमतुनि बाबति तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल ऐं सिंध में गवर्नर जे मामले ते बि ॻाल्हियूं थियूं ज़रियनि जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म कराचीअ खां 20 अरब रुपियनि ऐं हैदराबाद जे लाइ 5 अरब रुपियनि जे तरक़ियाती पैकेज ते इतफ़ाक़ कयो आहे ज़रियनि मूजिब हुकूमत MQM जे तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल बाबति गॾिजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां ॻाल्हियुनि जी ख़ातिरी पिण कराई आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ MQM जे तजवीज़ कयल आइनी तरमीमी बिल जी हिमायत करे थो सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वेस्क्यूलर डिज़ीज़ ऐं हसन सुलेमान मेमोरियल हस्पताल मलीर जे विच में मुफ़ाहमती MOU ते सहियुनि जी तक़रीब जी सदारत कई जंहिंजो मक़सदु मलीर ऐं आसपास जे इलाइक़नि जे रहाकुनि लाइ दिलि जे मर्ज़नि जी जामिया ख़िदमतुनि जी फ़राहमी आहे उन भाङे वारे तहत हसन सुलेमान मेमोरियल हस्पताल दिलि जे हंगामी मरीज़नि जी जांच मरीज़नि खे मुस्तहकम करण ऐं इलाज खां पोइ जी निगहदाश्तूं ख़िदमतूं फ़राहम कंदो जड॒हिं त एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी ऐं दिलि जे ऑपरेशन जहिड़नि जदीद इलाज जी ज़रूरत वारनि मरीज़नि खे हिकु मख़सूस रेफरल निज़ाम ज़रिए NICVT मुंतक़िल कयो वेंदो उन तावुन में टेलीकार्डियोलॉजी सपोर्ट माहिरनि जी मुशावरत ऐं तिबी नीम तिबी पैरामेडिकल अमले जी सलाहियतुनि में इज़ाफ़ो पिण शामिल आहे सयन जी तक़रीब वज़ीर आला हाउस में मुनक़िद थी जंहिं में सिहत वारे वज़ीर डॉक्टर अदरा फज़ल पेचू हो वॾे वज़ीर जी सेक्रेटरी आसिफ़ जमील सिहत सेक्रेटरी ताहिर सांगी NICVT जे क़ाइम मक़ाम एसोसिएट एग्ज़ीक्यूटिव डॉक्टर असद बिलाल अवाण प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद हायर एजुकेशन कमीशन HEC जे चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक रफ़ी ऐं ॿियनि सीनियरनि इख़्तियारनि शिरकत कई सिज वॾे वज़ीर ख़िताब कंदे चयो त सिंधु हुकूमत मयारी तिबी सहूलियतुनि ताईं रसाईअ खे वसत ॾियण ऐं जान बचाईंदड़ दिलि जे मरीज़ जे इलाज खे आवाम जे घरनि जे वेझो पहुचाइण जे लाइ पुरज़म आहे हुन चयो त NICVT मुफ़्त ऐं आलमी मयार जी दिलि जे इलाज जी फ़राहमी ज़रिए लखे माण्हुनि लाइ उमेद जी अलामत बणिजी चुको आहे
وڈے وزیر صحت خاتے این آئی سی وی ڈی انتظامیہ کی ہدایت کئی تو معاہدے سے اثرائتی عمل درآمد کے یقینی بڑھایا وجے اڑن مریضن کے مضبوط ریفرل منتقلی جو نظام تیار کیا وجے جن کے دل کے جدید علاج کی ضرورت ہوجائے۔ سندھ کے سامنڈی پٹی والے پچھڑی والے ضلع ٹھٹے میں پانی کی شدید کھوٹ سنگین صورتحال اختیار کر رہی ہے۔ کئی زمین سخت متاثر تھی رہا ہے، سارے آلو فصل سکی ٹھوٹ بنجی ویو ہے، جڑے تو کترن ہی واہن شاخن میں پانی کی جائے تے واری اڈامن جا منظر ڈسن میں اچھی رہا ہے۔ کترن ہی گوٹھن میں رہواسی پینے کے پانی کے لیے میلن جا مفاصلہ طے کرنے تے مجبور ہیں، جن سبب روزانی زندگی بھی سخت متاثر تھی رہی ہے۔ بے طرف آبادگار ہارن سماجی تنظیم حکومت کا مطالبہ کیا ہے تو کوٹڑی بیراج کا ہیٹھائیں علاقوں تھی پانی کے منصفانے وچھ کے یقینی بنایا وجے، ڈاؤن اسٹریم میں پانی کی فراہمی بحال کی وجے، متاثر علاقوں کے ہنگامی بنیادوں سے ریلیف فراہم کیا وجے تو جی زرعی تباہی انسانی بحران کے روکے سکجے۔ وفاقی حکومت ایندڑ مالی سال کے بجٹ میں وفاقی ملازمن ہتھیار بند فوج پینشنرن لائے ریلیف پیکج جو اعلان کر چڈیو ہے۔ فائنانس بل موجب